नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तीसरी तिथि। तदनुसार आज दिनांक 25 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 8:54:30 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में ऑनलाइन रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं और आप OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हमें सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों, सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरित मानस गान, 9:20 से आप सुनेंगे वंदना भक्ति संगीत का कार्यक्रम, 9:40 से आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, 10 से आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 से आप सुनेंगे गाने नए तराने नए, 11 से आप सुन पाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

शाम 5 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, और युवाणी में आज आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने महिला जगत का। समय रहेगा शाम 5:30 से 6:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, लोकगीत और बचनों पर आधारित कार्यक्रम माटिक के स्वर आप सुनेंगे शाम 6:20 से। किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7 बजे से, और 7:30 से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

एल्बम सॉन्ग सुनेंगे रात्रि 8 बजे से, और लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर सुनेंगे रात्रि 8:30 से। 9 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत, और 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने बांडी, जोजरी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तीनों के किनारे 500 मीटर में उद्योगों पर रोक लगाई। यमुना जल परियोजना की डीपीआर के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी की गईं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के 5 जिलों में आज से उर्वरक बिक्री की डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। और राज्य में मॉनसून फिर से सक्रिय, आज पूर्वी राजस्थान में कई जगह हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की बांडी, जोजरी और लूणी नदी

में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं बाढ़ रेखा या नदी के प्रवाह क्षेत्र की दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। ये व्यवस्था उच्च बाढ़ रेखा और पारिस्थितिकी बफर जोन के वैज्ञानिक सीमांकन तक लागू रहेगी। आदेश का अजमेर जिले पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को नदी तंत्र के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए समन्वित कार्य योजना पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में कल 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। परियोजना की DPR के लिए आवश्यक हाइड्रोलॉजी और अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 21 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग में परियोजना की DPR की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने DPR के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों से भाई बहन के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक में कहा कि पौधरोपण करने वाले भाई बहनों को सम्मानित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने अभियान की समीक्षा करते हुए इस साल 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक 7,58,00,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय से पौधरोपण करने और लगाए गए पौधों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आमजन को त्योहारों के अवसर पर पौधरोपण के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश के 5 जिलों में आज से उर्वरक बिक्री की डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू में लागू होने वाली इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना और कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर अंकुश लगाना है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। इसके तहत किसान उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे और उन्हें 48 घंटे के लिए वैध टोकन जारी किया जाएगा। टोकन के आधार पर किसान नजदीकी अधिकृत विक्रेता से उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। विभाग के अनुसार डिजिटल निगरानी से उर्वरक की मांग, उपलब्धता और वितरण पर नजर रखी जाएगी और वास्तविक जरूरत वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
नई दिल्ली में होने वाले भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 के लिए पहला क्षेत्रीय रोड शो जयपुर में आयोजित किया गया। ये शो आयोजन से पहले निवेश को गति देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा भागीदारों को एक साथ लाने का सरकार का प्रयास है। इसमें सरकार, उद्योग और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन संबोधन में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम

0: लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए राज्य की रणनीतिक रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान परंपरागत सौर प्रणाली से आगे बढ़कर नए और उभरते हरित ईंधन के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 31 जुलाई तक 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है। एनर्जी समिट 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। चूरू में पुलिस ने 26 बड़े अपराधियों की करीब 3 करोड़ 61 लाख रुपए की अवैध संपत्ति के खिलाफ जब्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में 26 इस्तगा से न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। सालासर थाना क्षेत्र में अपराधियों की जमीन नीलाम कर उसकी राशि राजकोष में जमा कराई गई है। वहीं राजगुड़ में गैंगस्टर के भवन और चूरू में पेपर लीक मामले के आरोपी की कथित अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा।
1: इस बार सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा ही दर्ज करना ही हमारा मेन मकसद नहीं है। उनकी जो आर्थिक बैकबोन है, उन्हें जो भी इस अपराध के क्षेत्र से उन्होंने जो भी कमाई किया है, अर्जित किया गया, उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन कर रहे हैं। हमारे तरफ से 107 बीएनएसएस जो है उसके तहत हमने ऑलरेडी एक मुकदमे में सफलतापूर्वक गाड़ी का जब्त करके नीलामी करके राजकोष में जमा भी करवाया गया है। उसी के साथ साथ और एक प्रकरण में भी हमने एक बदमाश का गाड़ी को जब्त करके नीलामी करने का भी अभी प्रोसेस में है। तो वैसे ही हमने लगभग 26 के आसपास चिन्हित किया गया, उसके अलावा भी बहुत सारे अन्य चिन्हित किया गया, तो उनको भी जल्द से जल्द इसके तहत इनकी जो संपत्ति है उनको जब्त करके उनके आर्थिक नुकसान करने के प्रयास में है।
0: प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित करीब एक दर्जन शहरों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हुई। डीग के सीकरी में 102 मिलीमीटर, जुरहरा में 67, नगर में 64 और कामा में 60 मिलीमीटर बारिश हुई। अलवर के मालाखेड़ा में 79, गोविंदगढ़ में 77 और खैरथल तिजारा के हरसोली में 87 तथा किशनगढ़ बांस में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक और डूंगरपुर में भी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान की कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।
2: पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग, वहीं कोटा और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा इनसे लगने वाले जो अजमेर संभाग के जिले हैं, वहीं उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। यानी पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियां जारी होंगी, कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने बांडी, जोजरी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तीनों के किनारे 500 मीटर में उद्योगों पर रोक लगाई। यमुना जल परियोजना की डीपीआर के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के 5 जिलों में आज से उर्वरक बिक्री की डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। और राज्य में मॉनसून फिर से सक्रिय, आज पूर्वी राजस्थान में कई जगह हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं वंदना।

नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे हरिहरन, सीमा मिश्रा, अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की आवाज़ों में चंद भक्ति रचनाएं। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिजियोथेरेपी का बढ़ता दायरा। इस विषय पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम से बातचीत कर रही हैं राजेश्वरी मंडा।
1: श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और नागौर के एक फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम और श्रोता यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो है, मतलब इसका क्षेत्र जो एक देखा जाए तो व्यापक है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। तो फिजियोथेरेपी जो है किस तरह से काम करती है और होती क्या है एक्चुअल में, मतलब श्रोता और ये जानना चाहते हैं।
2: जी, फिजियोथेरेपी ये होती है कि आपका इलाज जो हो वो बिना दवाई के सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू किया जाए। ठीक है,
1: बिल्कुल। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे कोई जकड़न है या फिर मतलब हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम होती है, तो हम अक्सर जो है मेडिकल लाइन में या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं और खूब सारी दवाइयां खाते रहते हैं। तो किस तरह से, मतलब हम जो हैं एक फिजियोथेरेपी की तरफ आए, तो किस तरह से मतलब लोगों का रुझान जो है फिजियोथेरेपी की तरफ हो जाए, तो इससे मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो आप थोड़ा इसके बारे में हमें गाइड कीजिए।
2: जी मैम, जैसे अपना क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, थोड़ा सा पेन हुआ, नेक पेन हुआ, नेक स्प्रेन हुआ, अक्सर लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो गर्दन नकड़ी हुई है या कमर जकड़ी हुई है,
1: बिल्कुल,
2: तो वो सीधा क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स भागते हैं, डॉक्टरों से मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन वो होती है जो आपने ली, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, वो होती तो बोलते हैं कि पेन किलर्स है, कि हम पेन किलर्स ले रहे हैं, बट इट्स नॉट अ पेन किलर्स।

0: इट्स अ पेन सप्रेशन, मतलब दर्द को दबाना,
1: दबा देती है।
0: सिर्फ वो दर्द को दबा रही है। पेन तो अपनी जगह है,
1: बिल्कुल।
0: जो दर्द शरीर में आया है वो शरीर खुद ही सही करता है।
1: अच्छा।
0: वो उसको एक फिजियो क्या करता है, एक फिजियो उसको एक लाइन पकड़ाता है,
1: वो तो मतलब तब तक रहता है कि जब तक उस दवाई का या फिर
0: दवाई का
1: टेबलेट
0: बस
1: का
0: असर
1: असर
0: होता,
1: असर होता है
0: बस
1: तब तक।
0: बस
1: हाँ
0: वो जब
1: हाँ
0: तक उसका असर होता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: और उतने टाइम में बॉडी
1: हाँ
0: अपने आप
1: हाँ
0: रिकवर कर लेती है।
1: जैसे ही असर खत्म होता है
0: हाँ,
1: वापस वो पेन
0: वापस
1: शुरू
0: वो
1: हो जाता
0: पेन
1: है।
0: शुरू।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अब फिजियो क्या करते हैं, फिजियो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं।
1: जी।
0: अब जैसे किसी को नेक में स्प्रेन आया है या गर्दन अक्कड़ गई है, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, गए मेडिसिन ली, अब गर्दन तो उसकी अकड़ी हुई है।
1: बिल्कुल। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: बट फिजियो क्या, फिजियो के पास आया वो, सबसे पहले उसका मायोफेशियल रिलीज करते हैं ताकि जो वो अकड़न है वो दूर हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड टाइम उसकी मोबिलिटी इम्प्रूव करते हैं, जो उसकी मोबिलिटी है जैसे
1: हाँ
0: राइट
1: हाँ
0: लेफ्ट देखना, ऊपर नीचे
1: हाँ
0: देखना,
1: थोड़ा लचीलापन आ
0: हाँ
1: जाए
0: वो
1: उसकी गर्दन
0: लचीलापन,
1: पे।
0: क्योंकि उसको तो पेन हो रहा है, वो हिला नहीं सकता,
1: बिल्कुल।
0: तो हम उसको एक पर्टिकुलर एक एंगल के थ्रू हिलाते हैं जिससे पेशेंट को भी पेन ना हो
1: हाँ हाँ
0: और उसकी मोबिलिटी जो है वो आ जाए।
1: जी।
0: ठीक है, अब जैसे ही मोबिलिटी आ गई, अब स्प्रेन आया क्यों है, ये आता इसलिए है क्योंकि मसल वीक है, जो नेक की जो मसल है वो वीक है, तभी ये प्रॉब्लम्स आई है।
1: जी।
0: हाँ, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए।
1: डॉक्टर साहब, एक जमाना था जब मतलब फिजियोथेरेपी की तरफ बिल्कुल लोगों का रुझान नहीं था, लेकिन आजकल लोग जो हैं जागरूक हो गए हैं और जमाना थोड़ा सा बदल गया है। पुराने टाइम में तो ना तो फिजियोथेरेपी की तरफ कोई रुझान था और ना ही मतलब कोई उपकरण थे ऐसे
0: जी जी
1: फिजियोथेरेपी में जो
0: जी
1: मतलब इंसान जिससे ठीक हो जाए।
0: जी
1: मतलब अभी जो चलन है वैसे तो मेडिकल में है, मतलब हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन काफी जगह ऐसे देखा जा रहा है कि भाई लोग जो है फिजियोथेरेपी की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और काफी मतलब उपकरण भी ऐसे नए आए होंगे।
0: जी बहुत सारे उपकरण्स भी
1: हाँ
0: नए आए। एक्चुअल में क्या है, लोग फिजियोथेरेपी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले जब नए नए जब मेडिसिन्स आई थी लोगों को इतना आइडिया नहीं था, पर अब लोगों को आइडिया हो रहा है, लोग जान रहे हैं कि मेडिसिन्स आपके बॉडी को
1: हाँ
0: अंदर से
1: बिल्कुल।
0: खोखला कर रही है,
1: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
0: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो
1: जी।
0: आपको टेम्परेरी तो बहुत आराम मिल रहा है, बहुत अच्छे हो रहे हो, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, पेन किलर्स हो
1: हाँ
0: गए,
1: हाँ
0: और भी ऐसी मेडिसिन्स आती है जो नसों के लिए होती है, जो
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल नसों को शांत कर देती है,
1: हाँ
0: बट
1: हाँ
0: उनके साइड इफेक्ट्स इतने हैं जिसको अगर एक नॉर्मल पर्सन पड़े
1: वो तो फिर
0: उसको
1: कभी
0: कभी नहीं लेना
1: टेबलेट यूज
0: चाहेगा।
1: ही नहीं करेगा।
0: बट
1: बिल्कुल।
0: फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
1: हाँ हाँ
0: उसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू जो भी पेन है, जो भी तकलीफ है, उसका आराम से इलाज करते हैं
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: 100% रिजल्ट देते हैं।
1: जी।
0: और जैसा कि अभी आपने मेरे से पूछा कि नए नए उपकरण आए हैं,
1: हाँ हाँ
0: एक्चुअल में नए नए उपकरण भी आए हैं, लाइक टेंस हो गया, हॉट पैक्स हो गए, IFT हो गया,
1: हाँ
0: MS हो
1: हाँ
0: गया, ऐसे बहुत सारे हैं, लेजर हो गई,
1: हाँ
0: तो ऐसे बहुत
1: हाँ
0: सारे हैं, ट्रैक्शन वगैरह है, बट
1: जी।
0: कुछ ऐसे उपकरण हैं
1: हाँ
0: जिसके
1: हाँ
0: बारे में जो पहले चलते थे
1: जी। लेकिन
0: पुराने
1: लोग
0: जमाने में,
1: जागरूक नहीं थे तो
0: जागरूक नहीं थे, पता नहीं
1: पता
0: था।
1: नहीं था
0: ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और
1: जी।
0: कहीं ना कहीं गलती जो पहले के जो राजा महाराजा थे, या जो आप कह सकते हो कि अंग्रेजों का वो जो आना हुआ,
1: जमाना था
0: क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन सब वहीं से आई है
1: जी।
0: और एक तरह से ये बिजनेस हब बना हुआ है,
1: बिल्कुल
0: इंडिया एक बिजनेस हब भी बना हुआ
1: बिल्कुल
0: है ना, तो मेडिकल फील्ड में इसको तो एक हब बना के रखा है।
1: जी।
0: और उस तरह हमें क्या करा गया कि अपनी जो एक्चुअल जो चीजें थी, लाइक एक्सरसाइज हो गई,
1: जी
0: कपिंग हो गई, कपिंग एक जमाना था पहले चाइना में, इसको ड्राई कपिंग और वेट कपिंग, मतलब ब्लड लेटिंग करके
1: हाँ हाँ
0: निकालते थे, वैसे ही इंडिया में हॉर्न, जैसे गायों के सिंग या कोई
1: हाँ
0: जानवरों
1: हाँ
0: के सिंग, उनसे करते थे
1: अच्छा।
0: सक्शन करके, उससे
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पेन रिलीफ वगैरह करते थे।
1: हाँ वो सक
0: उस
1: करके।
0: सबको
1: हाँ हाँ
0: हटा दिया गया,
1: जी।
0: क्यों, बताया गया कि भाई ये इससे इन्फेक्शन होता है, या इनसे ये होता है, इनसे
1: हाँ
0: वो होता
1: हाँ
0: है, डरा डरा के हटा दिया गया।
1: हाँ हाँ
0: और हमें किस तरफ ले गए, हमें मेडिसिंस की तरफ ले गए।
1: जी।
0: मेडिसिंस की तरफ आप ले तो गए,
1: हाँ हाँ
0: पर आपने बीमारी कितनी बड़ी पैदा कर दी,
1: जी।
0: डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली आपने तो उनको मारा ही अंदर से अंदर।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, आपने ये बोला कि उपकरण्स में, जैसे और भी जैसे उपकरण से, जैसे चाइना में एक उपकरण आता है ड्राई नीडलिंग कहते हैं उसको,
1: हाँ हाँ
0: जी वो निडल्स होती है, बिल्कुल बारीक बारीक निडल्स होती है,
1: हाँ हाँ
0: वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों में यूज आती है।
1: जी। हाँ तो सर, ड्राई नीडलिंग

0: और कपिंग के बारे में आप श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी और दें तो अच्छा है।
1: जी, ड्राई नीडलिंग का ये है कि जैसे अगर कोई भी स्प्रेन आया है या कई मसल में पेन हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि वहाँ पे कोई ट्रिगर पॉइंट बना है।
0: जी
1: ट्रिगर पॉइंट ये होता है कि मसल्स, अगर जैसे हम वर्क कर रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं, जैसे हाथ मोड़ रहे हैं या सीधा कर रहे हैं, तो जब हम अपना हाथ मोड़ रहे हैं तो अपनी जो बाइसेप्स यानी जो बाजू की जो
0: हाँ
1: मसल
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: छोटी हुई जब
0: बिल्कुल।
1: आपने हाथ मोड़ा, और जब उसको सीधा करा तो वो लंबी हुई।
0: लंबी हुई।
1: तो इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर्स शॉर्टनिंग
0: हाँ
1: लेंथनिंग का
0: हाँ
1: काम होता रहता
0: वो
1: है,
0: फ्लेक्सिबिलिटी रहती है।
1: फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव
0: जी
1: रहती है।
0: जी
1: बट क्या होता है कि जब आप ये मोबिलिटी कर रहे हो
0: हाँ हाँ
1: तब उसमें क्या होता है, अब जैसे मसल अगर वीक है या
0: हाँ
1: उसमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं है या उसमें
0: जी
1: वाटर की कमी है,
0: जी
1: तो उसके फाइबर्स कहीं ना कहीं अटक जाते हैं।
0: जी
1: जैसे अगर उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट करा यानी मोड़ा हाथ,
0: हाँ
1: और जब
0: हाँ
1: सीधा करने गए तो आपने देखा
0: हाँ
1: पेन
0: होता है,
1: हुआ,
0: अकड़न सी हो जाती है,
1: हाँ
0: पेन
1: ये
0: होता
1: हुआ,
0: है। और
1: और
0: कभी
1: वो
0: कभार तो इतना
1: इतना ज़्यादा
0: मतलब
1: पेन होता है कि
0: हाँ
1: चीख निकल जाती है।
0: बिल्कुल
1: और ये अक्सर सर्दियों के टाइम पे
0: हाँ
1: चाहे कोई भी हो उनके काफ मसल यानी पिंडली, पिंडली के
0: हाँ
1: मसल में अक्सर देखा जाता है,
0: होता है।
1: होता है।
0: हाँ सर मेरे भी होता है।
1: जी, तो ये वीकनेस की वजह से, और फिर उस
0: हाँ
1: ट्रिगर पॉइंट को खोलने में ये बहुत मददगार होती है।
0: अच्छा सर, अगर किसी दर्द को मतलब आप किस तरह से समझ पाते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से, तो जैसे कमर दर्द है,
1: जी
0: ऑर्थराइटिस है, या फिर साइटिका है, शॉर्टिंग ऑफ मसल्स है, ये मतलब मसल्स वीकनेस की और जो जितनी भी मतलब जो मसल्स से संबंधित
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: बीमारियां होती है, तो उनको आप मतलब फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस तरह से समझ पाते
1: जी
0: हैं?
1: देखिए, पेशेंट्स आते हैं, वो आए वो हमें कहते हैं कि कमर दर्द हो रहा है।
0: जी
1: अब कमर दर्द होता है, अब
0: ये
1: जी जी
0: हाँ ये आमतौर पर आजकल जो है कमर दर्द की प्रॉब्लम सबको होती
1: बहुत हो
0: है।
1: चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आजकल लगभग सबका नाइन मतलब 80 to 90% लोगों का
0: बिल्कुल
1: सिटिंग जॉब
0: जी
1: है ना, या तो सिटिंग जॉब है या नहीं तो वर्कर्स जो होते हैं उनका हैवी लिफ्ट का काम होता है।
0: हाँ
1: अब उसमें क्या होता है, अब जैसे आप सिटिंग जॉब है, अब सिटिंग में आप बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं कॉन्स्टेंट, बस बैठे हुए 8 9 घंटे आपका,
0: हाँ हाँ
1: तो उसमें मसल बैक की जो होती है वो वीक पड़ने लग जाती है।
0: हाँ
1: तो अब उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे किसी को होता है शाइटी का पेन शुरू हो जाता है,
0: हाँ
1: ठीक है, किसी को डिस्क बल्ज तक हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है।
0: सर। अगर ऑर्गन्स की बात करें तो मतलब किस तरह से ऑर्थोपेडिक जो है
1: जी जी
0: मतलब किस तरह से इफेक्टिव है?
1: जी ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो जब अपन कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो
0: हाँ
1: उसमें लंग्स एक्सपांड होंगे यानी जो अपने फेफड़े हैं
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: फूलेंगे। फेफड़े जो होते हैं शरीर के बहुत ही अच्छे एनर्जी सोर्स होता है,
0: जी
1: क्योंकि सांस हम इसी में देते हैं
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल
1: यहीं से निकालते हैं।
0: जी
1: तो जब तक अपना ये एनर्जी सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क करेगा तभी पूरी बॉडी में अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो इसमें ये मददगार होता है बहुत ज़्यादा।
0: जैसे गैस की प्रॉब्लम है या फिर जो कॉन्स्टिप्यूशन है, तो
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: भी फिजियोथेरेपी काम करती है
1: जी
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: नहीं?
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी मोबिलिटी इम्प्रूव करेंगे तो
0: हाँ
1: गैस की प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, ना तो कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है और
0: जी
1: ना ही डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते, आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सही हो जाती है।
0: जैसे सर कभी कभार क्या होता है कि कमर दर्द मतलब सही होती है कमर, लेकिन कोई जैसे ज़्यादा वजन उठा लेते हैं तो उसके बाद कमर शुरू हो जाती है दर्द करना,
1: हाँ,
0: तो ऐसा अक्सर मतलब फीमेल्स के साथ होता
1: फीमेल्स के साथ
0: है
1: होता है। जी
0: और
1: बिल्कुल, ये
0: मेरे साथ
1: आपने
0: भी होता है,
1: जी
0: तो मैंने ये क्वेश्चन
1: जी
0: मतलब करा
1: ये
0: है।
1: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो अपने इंडियंस पेरेंट्स को, खासकर
0: हाँ
1: पेरेंट्स को
0: हाँ
1: जानना बहुत
0: हाँ
1: जरूरी है। पेरेंट्स को जानना इसलिए जरूरी है, आजकल क्या होता है, लेडी प्रेग्नेंट हुई, अब उसको क्या करते हैं, उसको बैठा देते हैं कि भाई तू रेस्ट कर,
0: जी
1: काम मत कर,
0: हाँ
1: ये मत कर
0: हाँ
1: वो मत कर, बैठ ही रहे। उससे क्या होता है उसकी स्पाइन में,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: जब बेबी जब पेट में होता है
0: हाँ हाँ
1: तब स्पाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होता है,
0: चेंज
1: और
0: होता है।
1: जैसे ही डिलीवरी हो जाती है
0: हाँ हाँ
1: उसके बाद उसका स्पाइन का स्ट्रक्चर वापस जो ओरिजिनल शेप था
0: वही
1: उसमें
0: हो जाए।
1: पहुंचने लगता है,
0: हाँ हाँ
1: ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, अब जैसे वो सिटिंग करी, सिर्फ उसने रेस्ट करा,
0: हाँ हाँ
1: बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको वो एक्सरसाइज करे,
0: एक्सरसाइज करें। हाँ
1: ताकि जब वो डिलीवरी का टाइम आए तब उसको कोई प्रॉब्लम ना
0: मतलब
1: आए,
0: स्पाइनल कोई प्रॉब्लम ना हो।
1: ना स्पाइनल और
0: हाँ
1: ना ही जब बेबी आउट आए, अगर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर
0: हाँ
1: बोला
0: हाँ
1: जाए तो, अगर वो जब बच्चा पैदा हो रहा है तब
0: हाँ
1: लेडीज़ को बहुत पेन होता है,
0: होता है।
1: और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो बच्चा ऊपर सरक गया
0: हाँ
1: या बच्चा
0: हाँ
1: इधर हो गया, सरक गया, ये हो
0: हाँ
1: गया,
0: हाँ
1: कर गया,
0: हाँ जी
1: तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज।
0: अच्छा
1: ताकि जब बेबी आउट आए तो वो इजली आउट आए,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: उसके बाद भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है।

0: होती है, इसलिए
1: जी
0: ताकि स्पाइन का स्ट्रक्चर वापस जो नॉर्मल पोजीशन में आया है
1: जी
0: उसमें वापस मसल्स स्ट्रेंथ पकड़े अपनी, और
1: जी
0: वो लेडी बहुत जल्दी खड़े होके चल फिर सकती है। मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग एक वर्कशॉप में थे,
1: हाँ हाँ
0: वहाँ पे मेरी एक बहुत सीनियर, 10 ईयर
1: हाँ हाँ
0: सीनियर थी मेरी
1: हाँ हाँ
0: लेडी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मेरी जब मैं जब प्रेग्नेंट हुई तब मैंने अपनी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं,
1: हाँ कंटिन्यू
0: मैंने
1: रखी।
0: कंटिन्यू रखी, यहाँ तक मैं पेशेंट्स के साथ करती थी। और उन्होंने बोला ना तो मुझे डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम हुई ना
1: हाँ
0: डिलीवरी के
1: हाँ
0: बाद प्रॉब्लम हुई, मैंने डिलीवरी
1: अच्छा।
0: के हफ्ते भर बाद ही अपना काम शुरू कर दिया।
1: बहुत अच्छी बातें जो है आपने हमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से प्रेरित करके बताई, और फिजियोथेरेपी की तरफ हमारा भी रुख मोड़ा है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार,
0: जी
1: नमस्ते।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे विलिय में, फिजियोथेरेपी का बढ़ता दायरा इस विषय पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम से बातचीत कर रही थी राजेश्वरी मंडा। अब सुनते हैं ये गजल। दोस्तों, इस गजल को आवाज दी है हरिहरन ने।

अभी आप सुन रहे थे हरी हरन की आवाज में ये गजल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सावन की घटा के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोंसले ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म वो कौन थी से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चलने से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म हमसाया से। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले ने।

दोस्तों, ये फिल्मी गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से। दोस्तों, आज शाम 5 बजे से युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं और आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं शाम 4:45 से लेकर 5:10 तक। हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर है 240-168। नागौर के स्टडी कोड है 015-82। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हाथी मेरे साथी से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उनका साथी रहे हैं किशोर कुमार।

0: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल का ये प्रसारण एफएम बैंड फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन सकते हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत। फिल्म का नाम है कहानी। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।
1: सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थी सावन की घटा, वो कौन थी, हमसाया, हम किसी से कम नहीं, हाथी मेरे साथी, और आखिर में जो आप गीत सुन रहे थे उसको हमने लिया था फिल्म कहानी किस्मत की से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चलन से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म लव आजकल के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दिए नीरज श्रीधर और उनका साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया से। आवाज दिए केके ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: दोस्तों, आज शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं और आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं शाम 4:45 से लेकर 5:10 के बीच में। हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर हैं 240-168 और नागौर के STD कोड है 01582। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। इस गीत को आवाज़ दिए अखिल ससदेवा और उनका साथ दे रहे हैं मनसील गुजराल।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने ने तराने ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म जुड़वा 2 से। इस गीत को आवाज़ दिए मीट अब्रोस, नेहा कक्कड़ और रोज किला ने।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं, फिल्म सोनू की ट्विटी की स्वीटी। इसी गीत से ये अगला गीत सुनते हैं, इसी फिल्म से अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और समरजीत कौर ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थी लव आजकल, भूल भुलैया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सत्यमेव जयते, जुड़वा 2 और आखिर में जो गीत आप सुन रहे थे उसको हमने लिया था फिल्म सोनू की ट्विटी की स्वीटी। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ होने या यार इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित होगा।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शौर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। समीर ने इसे लिखा है, ललित का संगीत है और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अदनान सामी के संगीत निर्देशन और उन्हीं की आवाज में सुनिए तेरा चेहरा, इस एल्बम का गीत जिसे लिखा है समीर ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। और श्रोताओं, आज दिन में 4 बजे सुनना ना भूलें कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। आज आप इसमें सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो। तो जरूर सुनिए ये कार्यक्रम। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं अल्ताफ राजा की आवाज में। दिल के टुकड़े हुए हजार ये एल्बम का नाम है। अरुण भैरव ने इसे लिखा है। अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की लिखा ये गीत। गोल्डी ने इसे संगीतबद्ध किया है, एल्बम का नाम तू ही मेरे रब की तरह है।

आइए अब आपको सुनाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत, गीत संगीत ललित सेन का, एल्बम का नाम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी तो नजर मिलाओ, इस एल्बम का गीत अब सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में। रियाज और रहमान सागर ने इसे लिखा है और संगीत है अदनान सामी का।

अदनान सामी के गाए इस गीत के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आयलाइंस के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की

0: तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सावन कुमार टाक ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी

0: बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: की रचना उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: बेवफा से वफा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

से चतोरी पतंग से

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम अब क्या होगा।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि यह प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल परिसर और मुख्य द्वार से 50 मीटर के दायरे में पिज्जा, बर्गर, चिप्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे अधिक वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। न्यायालय ने स्कूलों को 4 सप्ताह में फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में शिक्षक, अभिभावक और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्कूल कैंटीन में उपलब्ध भोजन की कैलोरी, सामग्री और पोषण संबंधित जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। स्कूलों और आसपास खाद्य पदार्थों की नियमित जांच के लिए टीमें गठित की जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को हर महीने निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कोटा के पूनिया देवली गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के बाद 27 बच्चों के बीमार होने की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से घटना की जानकारी लेकर बच्चों के समुचित उपचार और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी के निर्देश दिए। श्री बिरला ने घटना की तथ्यात्मक और निष्पक्ष जांच कराने और भोजन, पानी तथा अन्य संभावित चीजों के नमूने लेकर जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि जांच में लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पानी की शुद्धता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में आगामी दिसंबर तक मेजर मिनरल की करीब 20 नीलाम खदानों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने जयपुर में खान विभाग और संबंधित संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन खदानों के संचालन से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी और अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बैठक में खदानों के संचालन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां और अन्य अनुमतियां जल्द जारी करने पर जोर दिया गया। इसके लिए आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताओं की चेकलिस्ट जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही तैयार मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की समयबद्ध नीलामी और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद रिटर्निंग अधिकारियों को मतदाता सूचियां अद्यतन करने, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाएं और संवेदनशील मतदान केंद्रों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारा में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं हनुमानगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशहाल यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए। पाली में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। अजमेर में जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने रिटर्निंग

0: और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। 27 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नागौर जिले में दो अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। श्री बालाजी थाना क्षेत्र के लाड़िया गांव में डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। दोनों कल घर से निकले थे और देर रात तक वापस नहीं लौटे। तलाश के दौरान दोनों के शव पड़ोसी के खेत में बनी डिग्गी में मिले। वहीं पाचौड़ी थाना क्षेत्र में पाचौड़ी माडपुरा मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दंपति सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता और पक्षियों के बारे में जानकारी लेने के लिए 16 देशों के करीब 20 विशेषज्ञों ने उद्यान का भ्रमण किया। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की ओर से आयोजित प्रशिक्षण के तहत ये भ्रमण कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान उन्होंने जैव विविधता संरक्षण, प्रबंधन तकनीकों और संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों को समझा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। चलिए वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए। सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

इस गीत में जो शब्द था, जी हाँ, वो यही शब्द था चांद। और शायद आप समझ गए होंगे कि चांद शब्द से और भी गीत हो सकते थे, मगर चूंकि इनमें नींद ना आने की बात हो रही है, तो ये हमारी कहानी से जुड़ता है, जो कहानी हमने पहेली में बताई है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी-कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हों तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथ ही लिखते हैं, आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है, बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है, जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है, जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं, इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अनजान और प्रकाश मेहरा ने। एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नयन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है और ऐसे में हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो योग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।

0: सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है, तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं। दो बदन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं, पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
6: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
7: मिलो जो तुम्हें बताए।
6: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
8: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
6: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द जुड़ता है।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता, तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं, और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है, परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और

0: चार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है। चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा आगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का

जो पारदर्शी हिस्सा होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
4: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता, प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
5: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
6: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
7: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
8: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो

0: 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार।

नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना चश्मे बहादुर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस इसका मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो?

0: प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल है?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं, कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सोनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं, अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना, उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता है रुको रुको फेंको मत, फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: उन्हें तो हम खास तौर पर संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमके कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो की सह संस्थापक है एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
2: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना,
1: मजेदार।
2: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे, वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं।
1: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सबने खाते तो भी एक किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी तो लाने के लिए।
2: बिल्कुल। फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सही से रख भी नहीं सकते,
1: एक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
2: बिल्कुल। तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सकें।
1: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों का पढ़ के।
2: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
1: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या?
2: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी। तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
1: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है चोरनी? हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। तो
1: और
0: आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने,
1: प्रेरणादायी
0: बिल्कुल, जिन्होंने
1: जी।
0: जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जिन जो संस्था सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीकों स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल। अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांग जन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एम्पियर ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन

0: इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
1: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
0: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के, उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूं।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी, क्या ये देखकर परख कर लेके आना है, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तो ऐसा करके फ्री में नहीं लाता। कितनी
1: बहुत अच्छी बात है,
0: अच्छी।
1: सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज। वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर, पत्नी हो या माँ हो, उसका मुआयना करती हैं। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं। अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है।
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है, अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कही है। और एक और मैं श्रीतन जो लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं, जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं। उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है। यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी, लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा। हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने उसी चीज को लिखा है वापस से।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही,
1: नहीं, आप पढ़िए।
0: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है, और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी, और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं, मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं। यानी देखिए दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोक झोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
0: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी, आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूँ, ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी

0: बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी, और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। ये बिल्कुल होता है घर में, कि
1: हाँ
0: घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं, और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता 1 किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर
1: बिल्कुल
0: अब हमें गीत सुनना है।
1: बिल्कुल, गीत सुनना है।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: तो आप किनका किनकी बात लेने जा रही हो
1: हाँ,
0: फाइनली?
1: आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरी इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी, एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के
1: सुना
0: बाद
1: लेकिन
0: हम
1: बताइए।
0: हाजिर है कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर बहुतेरे मोल भाव हुआ कर फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी
1: बहुत अच्छी
0: अच्छी
1: बात,
0: बात है।
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज ना मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना,
1: बिल्कुल
0: डाइट खाने से अच्छा ऑप्शन है।
1: पहले ही बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है।
1: सुनना है।

0: रानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है
0: हाँ।
1: कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते
0: दिरे
1: होते
0: दिरे
1: होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं,
0: जी
1: घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है यह विषय। हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है इन्होंने।
0: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी एक साथ ही लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
0: बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
0: वाह, इन्होंने गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़, ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने के बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
0: गीत सुनना है।
1: सुनते हैं गीत।

रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है, उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का, जो पीतल के जो सामान होते थे, उनको हमने अच्छे से रख लिया है। तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है। ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं।
1: ये ना बहुत
0: हाँ
1: उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है
0: हाँ
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जो
1: रखना
0: बर्तन
1: भी
0: होते हैं पुराने
1: चाहिए।
0: दिए
1: और
0: के।
1: अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन, कि अब पुराने जमाने की जो चीजें हैं ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे,
0: हाँ
1: बीच के जमाने में, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की चीजें
1: खासकर
0: हैं,
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक
1: थैलियां,
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक की
0: बिल्कुल भी आप
1: बोतलें,
0: बिल्कुल मत रखाइए।
1: रद्दी रद्दी के जो पेपर हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे
0: हाँ
1: भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है।
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं। लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी, लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल
1: यानी
0: दीजिए।
1: दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में, उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं, कि भी सामान बढ़ा लिया फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम इन्हीं सभी कामों में
0: बिल्कुल,
1: उलझे
0: उन्हीं
1: रहते
0: में लगे
1: हैं।
0: रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सभी बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: बार बार
1: कही आपने,
0: कहेंगे क्योंकि
1: कि
0: हम
1: जब
0: लोग
1: हम
0: ये
1: खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो इससे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है,
0: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया है ना,
1: समझाया
0: वर्णन किया
1: जी।
0: है। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे जिस तरह से बताया, तो वही बताने उस बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने से, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों करने से, कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं ना, मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
1: बिल्कुल सही
0: दुखों को
1: कहा।
0: नहीं। दुखों को, ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
1: हाँ, तो अब क्या करना है,
0: एक गीत
1: गीत
0: सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं, गीत।

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के
1: आप
0: बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना, इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो, इसके बाद अगर मकान मालिक किराए लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी ही
0: बिल्कुल
1: बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द
0: जी
1: या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और मत
1: बल्कि
0: करिए।
1: मरहम का काम करें अपने
0: बिल्कुल
1: शब्दों के माध्यम से। और
0: जी,
1: अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और
1: बिल्कुल
0: बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। और
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा
1: आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप,
0: और
1: और
0: विविध भारती सुनते रहें। और हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीक हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ, ऐसे ही हमारा वही गुटलियाँ, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें गलियों में, जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और
1: मिट्टी में
2: वो वाला खेल तो हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
2: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी?
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है, तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत सिखाई जाती थी।
3: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
2: मेरे
1: कौन से गांव की बात है ये
2: जल गांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी?
2: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहाँ पे मेडिटेशन, ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी। तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
2: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लोटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे, तो लखनऊ

0: में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती था, तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
1: जी, ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है गुलजार साहब
0: हाँ
1: काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
0: अरे
1: नहीं
0: बहन
1: नहीं बहुत
0: का
1: अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है
0: हाँ
1: उनका,
0: हाँ
1: कमाल। जी, आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है। तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं? कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे जो।
0: नहीं देखिए, कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है।
1: जी
0: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना। मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए। वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी,
1: जी
0: लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार। क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
1: बिल्कुल
0: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में, कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है।
1: जी, क्या बात है
0: अगर वो
1: आपकी।
0: बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो
1: बिल्कुल
0: वो सफल भी हैं, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग। तो ये विविधताएं जो हैं करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है। आपको
1: जी
0: स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है, तो
1: जी।
0: वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है,
1: जी
0: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है।
1: जी वेलकम टू दी जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल,
1: पूरी
0: राजपाल यादव, और
1: इंडस्ट्री
0: हाँ जैकी श्रॉफ, और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, और रवीना टंडन, और मुकेश तिवारी, और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
1: राजपाल यादव की
0: राकेश
1: भूमिका
0: देशमुख
1: कैसी
0: हैं,
1: है, आपकी कैसी
0: हमारी
1: भूमिका?
0: भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है। मैं देखना चाहता हूं क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें
1: जी
0: ना कोई कहानी जैसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस
1: हाँ।
0: हमको खड़े हो जाओ यहां पे, ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
1: अच्छा
0: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है, एक्टिंग बड़ी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े
1: जी
0: सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक एक और दो, तो ये वेलकम 3 है मान लो, वेलकम टू द
1: जी
0: जंगल।
1: जी अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने एक खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक छप्पन, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर,
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है
1: क्या बात है, प्रतिभा जी
0: मेरी
1: की
0: भी
1: फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं, आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
0: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली है फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल।

0: तो हम वही वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी, तो पुलिस
1: सारी
0: की
1: फिल्मों
0: भूमिका।
1: में तो नहीं, वेल्डन अब्बा, धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी।
0: जी
1: और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो
0: जी
1: आप अब अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्जू करके किया। कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो
0: जी
1: नाना पाटेकर ने भी बुद्धि फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं पे किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
0: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
1: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं। अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था, जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमित अमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूं देखता हूं, तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल, यू विल बिकम ए वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माई फिल्म ऑल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब
0: स्टाइल भी वही है।
1: मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर तो एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो बोले यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा कहाँ,
0: जी
1: बुलाया उन्होंने, एक 5 स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री,
0: क्या
1: तेलुगु
0: बात है।
1: इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ
0: क्या बात है,
1: परफॉर्मेंस ही हैज डन,
0: क्या बात है।
1: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए। बाद में कभी बुलाया नहीं।
0: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
1: याद है तुमको, तुमने कहा था तुझे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
2: क्या

0: कसम वो इरादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
0: इन्होंने मेरा
1: सारे
0: बहुत बार दिल तोड़ा
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
0: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
0: समय
2: बोल
0: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
0: बहुत
2: हजार
0: ज्यादा पुराना
2: हुए,
0: गाना है
2: कोई यहाँ
0: वो
2: गिरा कोई। अरे लेकिन
0: यहाँ
2: गाना कमाल
0: गिरा।
2: है ये।
1: नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
0: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके पैर तक
1: वो
0: पसंद
1: पसंद तो
0: करते
1: शादी
0: हो।
1: के पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
0: नहीं नहीं
1: पत्नी
0: वो
1: में।
0: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती
2: ठीक है, अब हम क्या उससे
0: उनके
2: ऊपर उठ चुके हैं।
1: बारे
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए, फिर
1: में
2: दोबारा से प्यार हो गया। अभी
1: ऐसा
2: हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: अच्छा एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा
2: कभी
1: बहुत
2: ऐसा
1: बढ़िया।
2: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
0: रात
2: को।
0: गई बात गई।
2: हाँ गई बात गई,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी, अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
2: बिल्कुल
1: का।
2: बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
0: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते
1: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर रखने
0: नहीं
1: की?
0: नहीं ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज
1: अच्छा
0: घर में, उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ
1: अच्छा
0: चीजों
1: क्या
0: को।
1: बात है, बहुत
0: मैंने
1: बढ़िया।
0: इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
1: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं, कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए, कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत
1: सच
2: बेकार
1: बोल
2: बात
1: रहे
2: है।
1: हैं प्रतिभा जी चलिए मान
0: हाँ
1: लेते हैं।
0: करती
1: बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
0: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
1: नहीं नहीं आपको अपने से बताना
2: जो
1: है
2: कुर्ता, जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ
0: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं
1: का रंग?
2: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था एनएसडी में, वो जो उसमें लगती थी ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई है।
1: ओहो क्या बात
2: वो
1: है
2: ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या
1: हाँ।
2: किसी फोक देसी टाइप के, जो इंडियन ड्रेस वो

0: जादू एनएसडी वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में?
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ,
0: मतलब आप गांठ रख लेती हैं मन में?
1: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
0: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी?
2: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है। मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, और हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
0: देखिए, यहाँ
2: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते। हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं, तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
0: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना?
2: अब तक 56 इज माय फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगाजल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर श्याम बेनेगल की।
0: जी जी,
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
0: जी,
2: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
1: इसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
2: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी, पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
0: जी,
2: 5 साल लगे बनाने में।
0: क्या बात है,
2: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
0: जी। आपने डायरेक्ट भी की है?
2: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
0: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
1: मुझसे आया था
0: जी,
2: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट नाना पाटेकर की
0: जी,
2: उसमें एक कहानी थी, एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है और वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देता
1: है, मराठी का नट सम्राट।
2: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है
0: जी, जी,
2: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी, तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाने शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत है, तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
0: जी,
2: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
0: जी,
2: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन उसमें अभी आना है।
0: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा?
2: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
0: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है, और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को?
1: बा

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस, शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो वहाँ गए थे शूट करने, अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं।
1: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं। पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है। तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं। तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सिलेक्ट करते हैं, उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म्स का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं। फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है। तो वेदा कुंभा में, बॉम्बे में, हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं।

0: करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
1: जी जी, बात अनुभव जी की चलिए, अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
0: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, आईसी, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
1: जी जी जी जी,
0: हाँ, उसमें हाँ, मैंने काम किया था एक छोटा सा, बढ़िया अच्छा रोल था छोटा
1: जी,
0: सा, एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: उसका
1: जी,
0: रोल था मेरा,
1: बिल्कुल।
0: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, दो या तीन सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं
1: जी जी
0: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं। तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और वो ओपनिंग फिल्म, और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
0: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
1: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतने सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म अमो आका एक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, उस प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है,
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी दो चार लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं करते हैं, शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
1: जी,
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली,
1: जी जी,
2: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
0: लॉकडाउन था,
1: जी
2: लॉकडाउन था, और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था, पहले 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पॉन्स ऑनलाइन में भी रहा,
1: और अब वेदा कुनबा में
2: ऑफकोर्स अब तो फिजिकली करते ही,
1: तो बहुत बढ़िया है, और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी हो सकते हैं,
2: बिल्कुल होना ही चाहिए।
1: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है, जिसमें यशपाल जी भी,
2: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है,
1: अच्छा वो प्रोड्यूसर है, तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
2: नहीं नहीं, कभी नहीं मिला, नहीं, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
1: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
2: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
1: जी,
2: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो, नो एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
1: अच्छा, क्या बात है।
2: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे।

0: और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था, फाइनल कट आने तक।
1: अब एक गाना सुनते हैं, फिर
0: हाँ
1: थोड़ी सी बातें और करते हैं।
0: जी,
1: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
0: कुहू कुहू बोले कोयलिया।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी? उन्होंने
1: मैं इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का, एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा
0: और कुछ फिल्मों के नाम
1: है, और अब तक छप्पन, और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये एक्टिंग?
1: हाँ मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान
1: हाँ
0: प्रदान?
1: मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का,
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देते हैं, सिखा देते हैं ना जो कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब। हाँ। मैंने समझने की कोशिश बहुत की क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे। इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी। फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे। इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दे। हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ा, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ा का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ा का मतलब गधा, शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए। अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
1: मैं तो मुझे
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, मेरा नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते तरीके। हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ है। मैं बिल्कुल अखड़ा आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली। कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए। और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसीलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है। तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल सही रहते
0: हैं। ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
0: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती।
1: नहीं नहीं इतने भी शरीफ नहीं।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता है कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते हैं और फिर हम भ्रम में रह जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
2: हाँ।
0: तो
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा मतलब देसी कढ़ी चावल हो गया, या वहाँ का राजमा चावल हो गया, या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है
1: और हमारा ही खाना
0: वाह।
1: हमारे ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा देख खा जाते थे।
0: अच्छा, तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है, बना
0: बना के
1: लेता हूँ।
0: खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा
2: खिलाते हैं।
0: जी, तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे
1: नहीं
0: श्रोताओं
1: नहीं
0: को।
1: बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। और साइकिल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे, और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर अंदर बाहर, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाए, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे, हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान, उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे रंग की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली, और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था, क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा, और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए, और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू, एक चीज पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
0: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
0: एक
1: बाप रे,
0: खिलौना बहुत कीमती हुआ
1: हमारा,
0: करता
1: हम
0: था
1: तो
0: अब।
1: 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
0: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: नहीं
0: यशपाल
1: मैं
0: जी अपने आप
1: तो
0: बताइए।
1: सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम ना दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता, जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास कर, कि हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार,
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए, और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर,
0: जी बिल्कुल,
1: करो मत, हो जाओ।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं? महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल,
2: और हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल सही बात है, और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहाँ से हुजूर।
0: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपके दोस्त विकास का कहिए साथियों, क्या हाल चाल है भाई? बिजी तो आप होंगे ही, क्योंकि ये समय ही कंपटीशन का है। जहां देखो भारी कला काट प्रतियोगिता, एक एक नंबर पर सैकड़ों स्टूडेंट। फिर भी अपने दिमाग को तरोताजा कीजिए कार्यक्रम युववाणी के संग। और युववाणी में आज का जो सफ़र होता है मंगलवार का, वो होता है फ़ोन करें गीत सुने। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं और अभी भी 10 मिनट का समय है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद की गीत। तो जो पहला ये फ़ोन आया है हमारे पास, ये आया है अजमेरी गेट से चांद मोहम्मद का, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म मर्द का ये गीत। तो सुनते हैं इनकी पसंद का, आप और हम सभी मिलकर ये सॉन्ग।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। राखे साइया मार सके ना कोई, अरे जागो राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल बाका कर सकेगा जो जग भेरी है।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: युवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज सेगमेंट है फ़ोन करें गीत सुने। तो एक फ़ोन आया है हमारे पास अनूप सिंह राठौड़ का अड़ाई से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजा और रंग का ये सॉन्ग।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम युववाणी है और आप सुन रहे हैं आज का सेगमेंट फोन करें गीत सुने। तो कार्यक्रम में ये एक और फोन आया है सरस्वती का राठौड़ी गुआ से और फिल्म करण अर्जुन का गीत सुनना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये सॉन्ग।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: हरसुख देवासी खारडा नागौर से और नियास पेंटर लोहारपुरा नागौर से सुनना चाहते हैं पति पत्नी और तवाय फिल्म का ये गीत।

जी हाँ, शर्मीली फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, जिसकी फरमाइश की है मुकेश शर्मा ने अमर सिंह कॉलोनी नागौर से।

0: हम चलते हैं। अच्छा तो हम
1: जी हाँ, ये कार्यक्रम में आखिरी फरमाइश आई है इकबाल टेलर नागौर की, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये सॉन्ग।
0: आधी रात को
2: कहाँ?

तो श्रोताओं, ये तो था आज का युववाणी कार्यक्रम। ये युववाणी कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और अब घड़ी का इशारा है कि आपसे विदा ली जाए, तो अपने दोस्त विकास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी दोस्त रेड बबीता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, महिला मानव जाति का आधार है। एक महिला जीवन को आगे बढ़ाती है। एक महिला सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देती बल्कि उसका पालन पोषण भी करती है। बच्चे को अच्छे संस्कार अपनी माँ से ही मिलते हैं। एक महिला न जाने कितने रिश्तों में रंग भरती है। कभी वो माँ बनकर ममता लुटाती है तो कभी पत्नी, बेटी और बहन बनकर रिश्ते निभाती है। लेकिन यही महिला कई बार अपने हक की लड़ाई भी लड़ रही होती है। भारत समेत ऐसे कई देश हैं जहाँ महिलाओं को आज भी बराबरी के हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। घर हो या ऑफिस, महिलाओं को हमेशा पुरुषों और पुरुषवादी सोच कम ही समझा जाता है। लेकिन एक बार किसी महिला को कोई जिम्मेदारी देकर तो देखो, वो उसे पुरुषों से कहीं बेहतर तरीके से निभा सकती है। सबसे खास बात यह है कि महिला हर चीज को खूबसूरत बना देती है। सखियों, महिलाएं आज से नहीं बल्कि सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो सखियों

0: क्या है इसका इतिहास?
1: अमेरिका में 1853 से महिलाओं के अधिकार की लड़ाई शुरू हुई थी। यहाँ महिलाओं की शादी के बाद संपत्ति पर अधिकार मांगने की शुरुआत की गई थी। उस वक्त अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिए जाते थे। पुरुष महिलाओं को अपना गुलाम समझते थे। इसके बाद साल 1890 में अमेरिका में नेशनल अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन का गठन किया गया। इस वक्त तक अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस संगठन के लोगों ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने की बात कही थी। साल 1920 में महिलाओं को अमेरिका में वोटिंग का अधिकार मिल गया। इसके बाद 1971 में अमेरिकी संसद में हर साल 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। अमेरिका में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद पूरी दुनिया में भारत समेत महिला समानता दिवस मनाया जाने लगा। सखियों, इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें आगे बढ़ाना। वहीं दूसरी ओर बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, कुकर्म, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। वहीं अगर देखा जाए तो महिलाएं आज भी इन सभी चीजों से लड़कर लगातार आगे बढ़ रही है। सखियों, भारतीय कानून में महिलाओं के जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार समान वेतन का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार, दफ्तर या कार्यालय पर उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद पाने का अधिकार, रात में महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार, वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार, अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करने सकने का इस्तेमाल अधिकार, महिला का पीछा नहीं करने का अधिकार और 0 FIR दर्ज कराने का अधिकार। सखियों, ये सभी अधिकार हमारे भारतीय कानून में महिलाओं को प्राप्त हैं। ये दिन सभी महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने तथा उन्हें प्रगति के पथ पर सफल होने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके सामने आने वाली बाधाओं को कम करने के बारे में भी मनाया जाता है। तो सखियों, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मानापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मानापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: सखियों, मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलादुन्नबी या ईद ए मिलाद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक और अंतिम नबी पैगंबर मोहम्मद साहब ने इंसानियत धार्मिकता की अद्वितीय मिसाल पेश की। उनका जीवन इस्लामिक शिक्षाओं का आदर्श है, जो इंसानियत, दया, न्याय और समानता पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 12 रबी अल अव्वल यानी हिजरी कैलेंडर का 3रा महीना उसमें हुआ था। यही तारीख पैगंबर साहब की मृत्यु का दिन भी माना जाता है। इस वजह से इसे 12 वफात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु की 12वीं तारीख। इस मौके पर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनके संदेश और इस्लाम के प्रति उनके योगदान को याद करते हैं। सखियों, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का यानी जो वर्तमान में सऊदी अरब में है, वहाँ हुआ था। उनके जीवन का हर पहलू इंसानियत के लिए वरदान के रूप में देखा जाता है। मोहम्मद साहब ने एक ऐसे समय में इस्लाम का प्रचार किया जब समाज में अन्याय, असमानता और अज्ञानता का बोलबाला था। उन्होंने सच्चाई, करुणा, भाईचारा और अल्लाह में अटूट विश्वास का संदेश फैलाया। उनके जीवन के मुख्य उद्देश्यों में मानवता के कल्याण और सामाजिक सुधार शामिल थे। वे गरीबों और कमजोरों के हक में आवाज उठाते और हर इंसान के साथ समानता और न्याय की बात करते। उनका जीवन सादगी और धैर्य का प्रतीक था। सखियों, मुस्लिम समुदाय इस दिन को विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन जुलूस निकालते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी कहानियों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, खैरात देना और सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में पैगंबर मोहम्मद शिक्षाओं के बारे में विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं और धार्मिक प्रवचन दिए जाते हैं। ये दिन इस्लामी संस्कृति और परंपराओं को मनाने का एक अवसर भी है। ये दिन कल 26 अगस्त को मनाया जाएगा। सखियों, 12 वफात क्या है? इसकी धार्मिक मान्यता, 12 वफात का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु की 12वीं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की वफात मृत्यु की तिथि से जुड़ा है।

इस दिन को शोक और जश्न दोनों के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को उनकी मृत्यु का शोक मनाते हुए याद करते हैं, जबकि कई इसे उनके जन्म के उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। 12 वफात के दिन लोग धार्मिक आयोजनों के जरिए मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का सार इस्लाम के 5 स्तंभों में निहित है, जो इस्लाम के मुख्य सिद्धांत है, जिसमें विश्वास यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है। सलात यानी नमाज, दिन में 5 बार नमाज अदा करना और जो एक मुस्लिम का कर्तव्य है। जकात यानी दान, जरूरतमंदों को और गरीबों की मदद के लिए दान देना। सौम रोजा, रमजान के महीने में रोजा रखना। और हज तीर्थ यात्रा, जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करना। सखियों, ईद मिलादुन्नबी या 12 वफात एक महत्वपूर्ण इस्लामी त्यौहार है, जो पैगंबर साहब की शिक्षाओं और उनके जीवन के आदर्शों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय न सिर्फ उनके जन्म का जश्न मनाता है, बल्कि उनकी मृत्यु को भी एक प्रेरणादायक घटना के रूप में देखता है। मोहम्मद साहब का जीवन सदैव दुनिया को इंसानियत, शांति और भाईचारे का संदेश देता रहेगा। इस्लाम के प्रति उनकी शिक्षाओं और योगदान को मान्यता देते हुए इस दिन को धार्मिक समर्पण और सामुदायिक एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सखियों, बातें तो आपसे आगे यूं ही होती रहेगी, अब आपको लिए चलते हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्यों टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है, जिसमें मांसपेशियों के सिकुड़न या संकुचन होने लगता है। ये जकड़न खासकर आपके जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में होती है। टिटनेस को आमतौर पर लॉकेजो के नाम से जाना जाता है। टिटनेस की गंभीर स्थिति जानलेवा हो सकती है। इसका वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण की वजह से आजकल टिटनेस के मामले कम ही देखने को मिलते हैं। वहीं जो लोग टिटनेस के टीके नहीं लगवाते, उनकी रोग प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है और ऐसे लोगों के लिए टिटनेस का खतरा काफी बढ़ जाता है। सक्यों टिटनेस के लक्षण कैसे होते हैं? टिटनेस के सबसे आम प्रकार के जो सामान्यकृत टिटनेस कहा जाता है, लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर 2 सप्ताह में बिगड़ जाते हैं। वे आम तौर पर जबड़े से शुरू होते हैं और शरीर पर निचले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इसमें दर्द नाक पेशियों में ऐंठन और आपके जबड़े में कठोर मांसपेशियों में जकड़न होती है। आपके होठों के आसपास की मांसपेशियों में तनाव होने लगता है। दर्द नाक ऐंठन और आपकी गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। कोई भी चीज निगलने में हमें कठिनाई होती है। बेचैनी और चिड़चिड़ापन, तेज सिर दर्द और तेज बुखार इसके लक्षण दिखाई देते हैं। सखियों टिटनेस क्या होता है? टिटनेस एक गैर संचारी जीवाणु संक्रमण है। इसे लॉकेजो भी कहा जाता है। इसे फैलाने वाले जीवाणु को क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कहते हैं, जो दुनिया भर में मिट्टी, खाद, धूल, मल और पशु

के मल में पाया जाने वाला एक सामान्य जीवाणु है। जब ये मानव शरीर में प्रवेश करता है तो ये अंकुरित होने लगता है, जिससे दो विषैले पदार्थ निकलते हैं, टेटानोसिलीन और टेटानोस्पासिन। ये विषैले टिटनेस का कारण बनते हैं। किसी भी उम्र के लोग अगर उन्हें टिटनेस का टीका नहीं लगा हो, टिटनेस से संक्रमित हो सकते हैं। शिशुओं, गर्भवती माताओं और ऐसे लोगों के लिए इसका खतरा ज़्यादा होता है जो मिट्टी में मौजूद कणों के संपर्क में आते हैं। इसमें किसान, अग्निशामक कर्मी, निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मी शामिल हैं। सखियों, शरीर पर कोई भी छोटे से छेद से ये बैक्टीरिया शरीर में पहुंच सकता है, जैसे फ्रैक्चर, घाव, अल्सर, दंत या शल्य चिकित्सा या संक्रमण जलने के कारण जो होता है उसके कारण। इसका बचाव, टिटनेस उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जिन्होंने कभी टिटनेस का टीका नहीं लगवाया। ऐसे में इस बीमारी का सिर्फ एक ही बचाव है, ये वह है टीकाकरण। टिटनेस का टीका बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस टाइकोसाइट्स और अकोशिकीय पर्टुसिस वैक्सीन के रूप में लगाई जाती है। इसका बचाव टीकाकरण ही है। तो सखियों, टीकाकरण अपना कर आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। सखियों, बातें तो आगे और भी आपसे करेंगे, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान

0: EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सखियो, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए कभी खुद से भी मिला कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त बबीता सोनी को इजाजत। नमस्कार।

FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: में विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी

0: पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
2: एजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम का ये पहला गीत है मिक्का सिंह और शेफाली की आवाज़ में फिल्म देसी बॉयज से।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: यह है सुखविंदर सिंह फिल्म ओमकारा में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह है कार्यक्रम का आखिरी गीत, कुमार सानू और देवाशीष की आवाज़ में फिल्म सड़क से।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज कलाकार हैं बद्री व्यास।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज कलाकार थे बद्री व्यास और ममता। FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों द्वारा लोगों को ईपीएफओ और आयकर डेटा तक पहुंच पर चिंता जताई। केंद्र सरकार को ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। देश में यूपीआई प्रणाली के 10 साल पूरे। 11 देशों ने डिजिटल भुगतान की इस भरोसेमंद सेवा को अपनाया। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 5 जिलों में अत्यधिक बरसात, 18 जिलों में सामान्य और 18 में सामान्य से कम बारिश हुई। और राज्य में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी निभाने की अपील। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की निजी संस्थाओं तक पहुंच को लेकर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इसके लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय करने पर विचार करने को कहा है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी का निजी कंपनियों की ओर से दुरुपयोग न हो सके। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि लोगों द्वारा सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया है। पीयूष शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ये सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की मदद से इस मुद्दे से निपटने के लिए ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए। देश में यूपीआई प्रणाली शुरू हुए आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। श्री मोदी ने लिखा कि यूपीआई प्रणाली के जरिए डिजिटल भुगतान बड़ा निर्णायक फैसला साबित हुआ है। इस दौरान यूपीआई के लेन देन में लगभग 13,000 गुना बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल भुगतान से लेन देन तेज और सरल हो गया है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई सहित 11 देशों ने डिजिटल भुगतान की इस भरोसेमंद सेवा को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक संबोधन में यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंटरफेस बताया।
1: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है।
2: भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एआई को शामिल करने की बात कही है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में आईसीएआर संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों और किसानों के बीच दी जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों से समय की मांग के अनुसार शिक्षण पद्धति में बदलाव करने और एआई आधारित उपकरणों को शामिल करने को कहा।
3: ये कागजी डिग्री बांटने से काम नहीं चलेगा, समय बदल रहा है, खेती भी बदल रही है, और हमारी कृषि शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। मैं खेती केवल क्लास हूँ, मैं कृषि की पढ़ाई नहीं हो सकती। खेती के लिए कक्षा के अलावा सोचने का कि बहुत जरूरत, सवेरे कक्षा में बैठे, दोपहर में खेत में जाए, वहां प्रैक्टिकल करे, शाम को खेले कूदे। मुझे लगता है कि किसानों के बीच बैठे, उनके साथ चर्चा करे, प्रैक्टिकल भी करे, बातचीत करे, समझे समझाए। विद्यार्थी केवल डिग्री लेकर नहीं, एक विचार लेकर निकले, एक समाधान लेकर निकले।
0: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल स्तर की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। आईसीएसआई के जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि जून महीने में ली गई इस परीक्षा में जयपुर केंद्र से 2 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि नीम का थाना की खुशी अग्रवाल ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। खुशी ने आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय निरंतर अभ्यास को दिया।
4: मेरा शेड्यूल मेनली तो यही था कि मुझे सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैंने 3 महीने रखे थे एग्जाम को पहले। एग्जाम के लिए मैंने मई जून एकदम बेस्ट दिया था अपना, फुल अटेम्प्ट किया था मैंने, 100 मार्क्स का पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये था। और सभी फैमिली फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। 5 सब्जेक्ट की क्लासेज मैं डेली कम्प्लीट कर लेती थी, मोस्टली रिविजन एंड टेस्ट, मैंने फुल सिलेबस के 2-2 टेस्ट दिए थे।
0: जयपुर केंद्र से महिमा मंगल ने देश भर में 16वां स्थान प्राप्त किया। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों परीक्षाओं की वरीयता सूची में पहले 3 स्थानों पर बालिकाएं रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। अलवर, बारा, भरतपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर और राजधानी जयपुर में आज हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती अंचल में मॉनसून की मजबूत झड़ी ने पूरे क्षेत्र को सराबोर कर दिया है। कोटा और आसपास के इलाकों में बीती रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी दिनभर बना रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई। खेती किसानी के लिहाज से किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। वहीं नौनेरा बैराज के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है। झालावाड़ के काले सिंध और राजगढ़ बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य में जलाशयों की स्थिति की बात करें तो जल संसाधन विभाग के अनुसार छोटे बड़े 693 में से 43 बांध लबालब हैं, वहीं 445 आंशिक रूप से भरे हैं। प्रदेश में अब तक डीग, भरतपुर और बीकानेर सहित 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 18 जिलों में सामान्य और 18 ही जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज की तरह कल भी 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

जारी किया है। इस दौरान डीग, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा सहित कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। हालांकि कोटा संभाग में 27-28 अगस्त को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उधर पश्चिमी राजस्थान में भी अगले सप्ताह तक मानसूनी परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। जयपुर नगर निगम की ओर से स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर की थीम पर ये अभियान चलाया गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि ये अभियान 7 सितंबर तक 6 चरणों में चलेगा। इसके तहत शहर के विभिन्न जोन में चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई की जाएगी। इसके बाद एंटी लार्वा गतिविधियां होंगी और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और स्प्रेइंग करवाई जाएगी। प्रदेश में अगले महीने 2 चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को गीत, पोस्टरों और रैलियों के जरिए वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर रंगोली मांडना, मानव श्रृंखला और मतदाता शपथ के कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों और स्वीप गतिविधियों के तहत आज सलूम्बर में बाइक रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने और लोकतंत्र में भागीदारी निभाने की जानकारी दी गई। उधर बालोतरा में छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संदेश से सजी राखियां बांधकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पाली नगर निगम में मतदान की तिथि में बदलाव किया है। यहां 9 तारीख के स्थान पर 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 9 सितंबर को

0: हाँ, 9 तारीख के स्थान पर 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 9 सितंबर को परियोजना हर 3 महीने में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की जाएगी।
1: हर 3 माह पे अगर कोई नए पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जहां की एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसको हम उसमें ऐड कराएंगे गूगल के द्वारा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कि जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा था उसमें उसका निदान हो गया है तो वो एक्सीडेंट का कारण अगर वहां समाप्त हो गया तो उसको हम लोग हटाने का भी कार्य करते रहेंगे। तो ये अभी हमने 3 माह का सोचा है, आगे एक्सपीरियंस के आधार पर इस टाइम को हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज दौसा में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में शिक्षा व्यवस्था, टीबी की स्थिति और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। राज्यपाल ने शिक्षा अधिकारियों से विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सहित कई मानकों पर चर्चा की। श्री बागड़े ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और पढ़ाई नहीं छोड़े, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। राज्यपाल ने दौसा को टीबी मुक्त बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली, साथ ही नशा मुक्त दौसा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थाओं के आसपास नशीले पदार्थों की उपलब्धता पूरी तरह रोकी जानी चाहिए। इसके लिए नशा कारोबारियों के नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
2: मैं जिस जिला में जाता हूँ उस जिला में बोलता हूँ कि नशा मुक्त जिला, अपना जिला जो है नशा मुक्त करो और वो थोड़ा सख्ती से करो। और कोई सरकारी डिपार्टमेंट ने कुछ लोग दारू पीते होंगे या नशा पानी करते होंगे, जो सरकारी कर्मचारी है उनको पहले मुक्त करो तो भी लोगों का असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्राइमरी शिक्षा, उच्च प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये हमारे सभी शिक्षकों का एक पाया है, वो मजबूत रहा तो बच्चे आगे जाते हैं।
0: राज्यपाल श्री बागड़े इसके बाद महवा भी पहुंचे। उन्होंने एक निजी विद्यालय में CBSE कबड्डी गर्ल्स स्टेट क्लस्टर टूर्नामेंट में शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। उनका जन्म सऊदी अरब के प्रमुख शहर मक्का में हुआ था। ईद मिलादुन्नबी का पर्व अमन, शांति, भाईचारे और मानवता का प्रतीक है। इस दिन को 12 वफात भी कहा जाता है। इस अवसर पर घरों, मस्जिदों, बाजारों और प्रतिष्ठानों को सजाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों द्वारा लोगों को EPFO और आयकर डेटा तक पहुंच पर चिंता जताई। केंद्र सरकार को ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। देश में UPI प्रणाली के 10 साल पूरे, 11 देशों ने डिजिटल भुगतान की इस भरोसेमंद सेवा को अपनाया। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 5 जिलों में अत्यधिक बरसात, 18 जिलों में सामान्य और 18 में सामान्य से कम बारिश हुई। और राज्य में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी निभाने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कमलेश कुमार झड़ोला। जिले में अगस्त माह में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कानून व्यवस्था से जुड़े काम जारी रहे। बारिश से खरीफ फसलों को लाभ मिला। श्रावण मास में धार्मिक आयोजन हुए और पुलिस ने नशे तथा अपराध के खिलाफ कार्रवाई की। नगरीय निकाय चुनाव के तहत सलूम्बर नगर परिषद में 11 सितंबर को मतदान और 14 सितंबर को मतगणना होगी। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन होंगी। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 3 सितंबर को नाम वापसी होगी। पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 2,50,000 रुपए तक का चुनाव खर्च कर सकेंगे। चुनाव की तैयारियों के तहत मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप और साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। ITI खोलड़ी में EVM स्ट्रांग रूम, CCTV और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बिना अनुमति सभा, जुलूस और रैली नहीं निकाली जा सकेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर

0: पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर फर्जी वोटर लिस्ट, गलत लिंक, ओटीपी और क्यूआर कोड के जरिए होने वाली ठगी से सावधान रहने की अपील की गई है। साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने को कहा गया है। पुलिस ने पिछले दिनों नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक कार से करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अलग अलग नंबर प्लेट भी मिली। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जनजातीय बालिका आवासीय विद्यालय में पिछले दिनों कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर अपराध, महिला अधिकार और कानूनों की जानकारी दी गई। विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक में पोक्सो और किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। बाल श्रम, बाल विवाह और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया गया। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों विकास कार्यों की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, बिजली और जल संसाधन तथा पंचायती राज विभाग से जुड़े कार्यों की जानकारी ली गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के समय पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। कृषि क्षेत्र में झल्लारा, सलुम्बर और लसाड़िया ब्लॉक में 447 बेंच टेरेसिंग के काम पूरे किए गए। इससे 447 किसानों को लाभ मिला और करीब 89.4 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि विकसित हुई। वहीं कृषि विभाग ने पिछले दिनों खाद की दुकानों का निरीक्षण कर यूरिया सहित अन्य खाद तय कीमत पर बेचने के निर्देश दिए। किसानों से खाद लेते समय रसीद लेने की अपील की गई। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात करें तो मिशन सलुम्बर के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं बोर्ड परिणाम में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान और अतिरिक्त कक्षाएं तथा उनकी प्रगति की जांच पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की पिछले दिनों समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिला अस्पताल में ENT, नेत्र रोग विशेषज्ञ और सर्जन की जरूरत पर चर्चा हुई। इंसुलिन की उपलब्धता और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक स्टाफ पर भी जोर दिया गया। नए जिला अस्पताल के निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया की स्थिति की समीक्षा की गई। ANC रिकॉर्ड और ममता कार्ड की जानकारी का मिलान करने के निर्देश दिए गए। अगस्त में जिले में बारिश का दौर रहा, इससे खरीफ फसलों को लाभ मिला। कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या भी सामने आई। बारिश के बाद मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 अगस्त से स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया है। ये अभियान 27 अगस्त तक चलेगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंचकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर रहे हैं और बुखार के लक्षण वाले लोगों की जाँच कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए कलूथड़ा और जेताना के ब्लैक स्पॉट का पिछले दिनों निरीक्षण किया गया। दुर्घटनाएं रोकने के लिए साइनेज, रिफ्लेक्टर और स्पीड ब्रेकर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं जिला स्तरीय बैंकर्स बैठक में किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सलुम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी कंपनियां कानून जनतारी EPFO और इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारियां ताई पहुंच माथा चिंता जताई। केंद्र सरकार ने हिफाजत रा मजबूत जतन लागू करन रा हुकम दीना। देश में UPI रे जरिए चुकारा रा 10 साल पूरा भया। 11 देश डिजिटल भुगतान री ई भरोसेमंद सेवा ने अपनाई। प्रदेश रा 5 जिला में चौमासारी मौजूदा ऋत में हाल ताई घणो में बरस्यो। 18 जिला में सामान्य और 18 में सामान्य कम बिरखाफी। और राज्य में आवता महीना वेवन वाला नगर निकाय चुनाव सारू जागरूकता अभियान। स्वीप गतिविधियां जरिए चुनाव में भागीदारी करण री अपील। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कने और आयकर रिटर्न में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारियां ताई गैर सरकारी संस्थावारी पहुंच जुड़ी चिंता जताई है। अदालत केंद्र सरकारों सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद व्यक्ति

0: व्यक्तिगत जानकारियां रो निजी कंपनियां कानून बेजा इस्तेमाल करण माथे रोक लगावण रे बारा माए विचार करण सारू कहो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो के जनता कानून सरकारी संस्थावां ने दीरी जी व्यक्तिगत जानकारी रो गलत इस्तेमाल नहीं वेवणु चाहिए। एक जना पीयूष शर्मा री ओर दायर जनहित याचिका माथे सुनवाई नटता थका मुख्य न्यायाधीश कहो कि केंद्र सरकार ने जानकारां री मदद इनु जुड़िया मजबूत हिफाजती इंतजाम लागू करना चाहिए। देश में यूपीआई सिस्टम सरूफिया 10 साल पूरा फेंक्या है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए जनता ने यूपीआई जुड़िया अनुभव बतावन सारू कहो है। श्री मोदी मांडियो के यूपीआई रे जरिए डिजिटल तरीका लेन देन रो फैसलो निर्णायक साबित हुयो। इस दौरान यूपीआई रे जरिए लेन देन में करीब 13,000 गुणा बढ़ोतरी हुई। फ्रांस, सिंगापुर और यूएई समेत 11 देश डिजिटल भुगतान री भरोसेमंद सेवा ने अपनाई। प्रधानमंत्री यूपीआई ने दुनिया रो सब मोटो डिजिटल इंटरफेस बतायो।
1: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है।
2: भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेतीबाड़ी जुड़ी भणाई लिखाई रा हलका माए एआई न शामिल करण बाबत कहो है। वे आज नई दिल्ली माए ICAR संस्थाना रा कुलपतियां और निदेशकां रा सम्मेलन माए बोल रहा है। श्री चौहान कहो कि कृषि शिक्षा कक्षारी बजाय खेतां और किसाना बीच दी जावनी चाहिए। वे विश्वविद्यालयों समय री मांग रे मुजब भणावण रा तरीका माए बदलाव करण और AI आधारित साजो सामान शामिल करण सारू कहो।
3: ये कागजी डिग्री बांटने से काम नहीं चलेगा, समय बदल रहा है, खेती भी बदल रही है, हमारी कृषि शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। तो खेती केवल क्लासरूम में कृषि की पढ़ाई नहीं हो सकती, खेती के लिए कक्षा के अलावा सोचने का कि बहुत जरूरत। सवेरे कक्षा में बैठे, दोपहर में खेत में जाए, वहां प्रैक्टिकल करे, शाम को खेले कूदे। मुझे लगता है कि किसानों के बीच बैठे, उनके साथ चर्चा करे, प्रैक्टिकल भी करे, बातचीत करे, समझे समझाए। विद्यार्थी केवल डिग्री लेकर नहीं, एक विचार लेकर निकले, एक समाधान लेकर निकले।
0: द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जून 2026 माई लीरीजी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल री परीक्षा वारा नतीजा नो ऐलान कर दिनो है। ICSI जयपुर चैप्टर रा अध्यक्ष CS सुमित कुमार श्योराण बतायो कि प्रोफेशनल परीक्षा माए जयपुर केंद्रों 2 विद्यार्थी मेरिट माए ठोड़ बनाई। नीमका थाना री खुशी अग्रवाल आखा देश माए अव्वल रही। खुशी आकाशवाणी समाचार जयपुर सागे खास बातचीत में लगातार अभ्यास ने सफलता री कुंजी बताई।
4: मेरा शेड्यूल मेनली तो यही था कि मुझे सेल्फ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, फिर भी मैंने 3 महीने रखे थे एग्जाम को पहले। एग्जाम के लिए मैंने मई जून एकदम बेस्ट दिया था, अपना फुल अटेम्प्ट किया था मैंने। 100 मार्क्स का पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये था। और फैमिली फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। 5 सब्जेक्ट की क्लासेज मैं डे में कम्प्लीट कर लेती थी, मोस्टली रिविजन एंड टेस्ट। मैंने फुल सिलेबस के 2 टेस्ट दिए थे।
0: जयपुर केंद्र री महिमा मंगल देश भर माए 16वां स्थान हासिल किन्नो। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा वारे मेरिट लिस्ट माए पहली 3 ठोड़ा महिला परीक्षार्थी कब्जो जमायो। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा उगनी हलका माए झमाझम बिरखा वह रही है। अलवर, बारा, भरतपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर और राजधानी जयपुर में आज हल्की मझला दर्जा रो में बरसियो। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और आरएसआर रा हल्का में लारली रात सरूफियो बारिश रो दौर आज ही चालतो रहो, जो खेती किसानी सरू फायदेमंद मान्यो जा रियो है। नौनेरा बैराज रा 2 दरूजा खोल और 2 पानी निकालो जा रियो है। झालावाड़ जिला रा काली सिंध राजगढ़ बंधाऊ पानी छोड़ो जा रियो है। जल संसाधन विभाग रे मुजब छोटा मोटा 693 बंधा मायू 43 पूरा भर गया है जदका 445 थोड़ा घना भरिया है। राज्य माए हालताई डीग भरतपुर और बीकानेर समेत 5 जिला माए घणो पानी बरसियो है जदके 18 जिला माए सामान्य और 18 जिला माए सामान्य कम बिरखा भी है। मौसम विभाग काली डीग सवाई माधोपुर झालावाड़ और कोटा समेत 17 जिला माए बिरखारो येलो अलर्ट जारी किनो है। 27 अगस्त 2 सितंबर बीच प्रदेश का उगनी हल्का माए बारिश कम पड़बारा आसार है। दूजी गानी राज्य रा आतुनी हल्का माए आवता सप्ताह ताए चौमासारी बिरखा मंदिर रेभन री संभावना है। राजधानी जयपुर माए चौमासारी रुत माए साफ सफाई री व्यवस्था बेहतर बनावण और मौसमी बीमारियां रो पसारो रोकण सारू आज खास अभियान शुरू करीचियो। जयपुर नगर निगम री ओर स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर री थीम माथे ओ अभियान 6 दौर माए 7 सितंबर ताए चलायो जावेला। निगम रा आयुक्त बतायो कहीं रहते शहर रा न्यारा न्यारा जोन माए अलग अलग दौर माए साफ सफाई कराई जावेला। ई पाछे मच्छर पनपमाऊ रोकण सारू जतन करिया जावेला। ईसा गई मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू फोगिंग कराई जावेला। राज्य माए आवता 2 दौर माए भेवण वाला नगर निकाय चुनाव सारू मतदाता जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। इरा तेत गीता पोस्टरा और रैलियां रे जरिए वोट जरूर देवण री सीख दी जा रही है। ईसा गई स्कूल कॉलेजा और जनता री आवण जावण री ठोड़ा रंगोली मांडना मानव श्रृंखला बनावण और वोट देवण री शपथ दिरावण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। स्वीप अभियान रा तेत आज सलूम्बर माए स्कूटर मोटरसाइकिला री रैली निकाली ची। इरे जरिए लोगों बिना डरिया वोट देवण री अरज करी ची। बालोतरा माए टावरिया मतदाता जागरूकता संदेश वाली राखिया बांधर वोट देवण बाबत जाग जगाई। ई बीच राज्य निर्वाचन आयोग पाली नगर निगम चुनाव माए वोट देवण री तारीख 9 री बजाय 11 सितंबर कर दीनी है। 9 सितंबर न पर्युषण महापर्व भेवण और जिला माए जैन धर्म मानबा वाला री 32 तादाद न ध्यान राखता थका ओ फैसलो करीचियो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART और सरोगेसी सेवाओं जुड़िया नियमों रा उल्लंघन रा आरोप माए एक फर्टिलिटी सेंटर समेत 9 केंद्रों रा रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दीना है। विभाग रे प्रमुख शासन सचिव बतायो कि वो केंद्र अखबार माए दिया जाए विज्ञापन माए भ्रूण ने नीला रंग माए बतायो हो। महकमो इन्हें पहली नजर माए लिंग चयन जुड़ी सेवा रा प्रचार रो संकेत मानता थका आ कार्रवाई कीनी। प्रमुख शासन सचिव बतायो कि संस्थान रा जयपुर माए 3 और भीलवाड़ा कोटा उदयपुर अजमेर और जोधपुर माए 1-1 ART सरोगेसी सेंटर रा रजिस्ट्रेशन निलंबित करी चिया। राजस्थान पुलिस री ओर राजधानी जयपुर माए आज ऑपरेशन सेफर रोड शुरू करी चियो। इरे तेत राहगीरा और मोटर गाड़ियां चलावण वाला ने गूगल मैप माथे वॉइस और पॉपअप मैसेज जरिए हादसा री शंका वाला हलका ने बारा माए जानकारी दी जावेला। जयपुर रेंज रा IG राहुल प्रकाश खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि 3 महीना माए हादसा री शंका वाला संभावित हलका माए हालात रो जायजो लियो जावेला।
5: हर 3 माह पे अगर कोई नए पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जहाँ की एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसको हम उसमें ऐड कराएंगे गूगल के द्वारा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा था उसमें उसका निदान हो गया है तो वो एक्सीडेंट का कारण अगर वहाँ समाप्त हो गया तो उसको हम लोग हटाने का भी कार्य करते रहेंगे। तो ये अभी हमने 3 माह का सोचा है, आगे एक्सपीरियंस के आधार पर इस टाइम को हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं।
0: ईद मिलादुन नबी काल मनाई जावेला। इस्लाम धर्म चलावण वाला पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब रा जन्मदिन री खुशी माए वो दिन मनायो जावे है। मानो जन्म सऊदी अरब रा मक्का शहर माए भी हो। ईद मिलादुन नबी रो पर्व अमन शांति भाईचारा और इंसानियत रो प्रतीक है। ई दिन ने 12 वफाती कहो जावे है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी कंपनियां कानून जनता री EPF और इनकम टैक्स जुड़ी जानकारियां ताई पहुंच माथे चिंता जताई। केंद्र सरकार ने हिफाजत रा मजबूत जतन लागू करन रा हुकम दीना। देश में UPI रे जरिए चुकारा रा 10 साल पूरा भिया। 11 देश डिजिटल भुगतान री ई भरोसेमंद सेवा ने अपनाई। प्रदेश रा पांच जिला माय चौमासारी मौजूदा रुत माय हाल ताई घणो मह बरसियो 18 जिला माय सामान्य 18 माय सामान्य कम बिरखाफी हर राज्य माय आवता महीना फेवन वाला नगर निकाय चुनाव सारू जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो

0: ಸಾಯಂತೇವ್. ನಮಸ್ಕಾರ.
1: एफ एम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है. शाम के 7 बजे हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी. इसका प्रसारण हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कर रहे हैं.

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। बे टूटी छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है आपना ए किसान। किसान वाणी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला श्रोतावा ने, काश्तकार भाई बहना ने, चंचलो ने भरियो राम राम। और सगला बड़ा बुढ़ा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मौसी, बहन भाईली, बुआ सब ने ढोगर जैसा। महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल जी आपने, और जो अपना किसान वाणी सुन बड़ा सगला काश्तकार भाई लोग है, बने भी घनी मोकली राम राम। और देखो चंचल जी, आपने कही कि जो का किसान भाई ही तो खेती बाड़ी तो करे ही, और खेती के माये आपा देखा हाँ कि भी एक जो रोजगार है, जो अपनो गांव को भाई बंद है, जो को विघन खेती हो या न हो, तो खेती में कई प्रकार का इस प्रकार का रोजगार ही जो खेती से जुड़ेड़ा ही और बस यू आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।
6: बिल्कुल सही बात कर रहे हो महेश भाई। आज जब मैं आ रही ना स्टूडियो की तरफ, तो आपके हाथी ने नुक्कड़ पर एक मंदिर है, है ना, और बटे खूब सारे फूल और माला आ रही बनी बटे चढ़ी है। तो एक छोटी सी बाई ही और एक आदमी हो जो पोट बांध रहा चढ़ोड़ी माला की। तो मैं बोली मन अहिया लागे की पूछू काई बात है, मैं पूछी पाने की ये पोट बांध रहे तो चढ़ोड़ा फूल है आंखों काई कर छो। तो बे मैंने बताया कि मैं तो ईसु अगरबत्ती और धूप बत्ती बनावा छा। तो देखो आपनो काश्तकार खेती बाड़ी में तो करी रहे है काम, और अच्छा रोजगार जो कोई सोचे ही को नहीं, जो आपने कचरो ला गया कि फूल माला है मंदिरा में भी चढ़ा पाचे जार कटे पेड़ा की जड़ा में ही पड़ा है बे, और एक टी हुआ गंदगी हो जावे बांसू। लेकिन वो तो बीसु ही धूप बत्ती और जो आपने अगरबत्तियां बना और उठा बेचे, तो बोले ईसु भगवान की सेवा भी हो जावे, जो चढ़ोड़ा फूल है आंखों निदादर भी कोनी होवे।
7: बिल्कुल, दो खेत कमाए देखो, चाहे गुलाब को फूल हो, चाहे गेंदों को, या फिर जो चमेली को फूल हो या मोगरो, तो पहले तो देखो वह तुड़ाई के बाद में बाजार में जाए, सुगंधित फूल ही तो देखो माला बने, फूल खुले में बिके, क्योंकि अतरा जगह समारोह हुए, ब्याह शादी और मंदिरा का मैं रोजिना फूलों की माला आवे बिके। बाद में देखा कि जो फूल सूख गया चढ़ा दिया तो कचरे कमाए जाता पहली, पर आजकल तो कई लोग गाड़ी लेके आवे हैं और बाने जो कहे भी भेड़ा करके ले जाए ही, क्योंकि भी कमाए भी कुछ फायदा जब भी ले जा रहे हैं।
6: बिल्कुल सही बात है।
7: तो इत्र और सुगंधित पदार्थ बन रहे हैं, अगरबत्ती बन रही है जो कि आप बताया, और एक अलावा औषधीय जो का टॉनिक ही और सौंदर्य प्रसादन। अब आपने तो मेरे योगों की भी गुलाब जल, फेस पैक, कई चीजें ही,
6: और आपने गेंदा का फूल आवे दो तीन

0: लंका आवे, है ना, और बांसू कपड़ा रंगबा को, अत्तो बढ़िया काम होवे है कि रंग बनाओ और काम में लियो। आपने अपराजिता का बैंगनी रंग का फूल आवे है। महेश भाई मैं खुद भी बनाई एक बार, घर में टाबर बोलिया कि आज तो भाई बनाओ मोमोज बनाओ साहब, मैं बनाया तो वो जो पानी उबालिया और फिर बीसू जो मैदा उसने और जो वह पर्पल कलर का ऐसा सुंदर सुंदर वह मोमो बनया साहब, मैंने बहुत चोखो लागो। और ना सिर्फ फूला को खाद्य रंग के रूप में काम में आवे, आपने जो गुड़हल होवे है, अपराजिता होवे है, आंकी चाय भी बिके है। यही फूल है जो चोखी तरीका से धोर सुखार और फिर आंको पाउडर बना चाय का रूप में बेचो जावे।
1: गुलकंद भी बना है, आप बताए हर्बल चाय है, और सजावट का माय भी देखो, एक देखो जो का सुखाने के बाद में थोड़ा सा बना तैयार करके हस्तशिल्प और सजावट का कई आइटम बने।
0: बिल्कुल साहब, तो आप कह सकते हैं कि फूला की जो खेती है या फूल जो है वे रोजगार को एक नयो रास्तो खोल रहे हैं, नयो गैलो खोल रहे हैं, बस आपने तो चालनो है भी पर।
1: और फिर भी वो खेत कमाए काम आ जाए है, क्योंकि जो का बागवानी में जो का पौधा ही बने फूला से जो की कंपोस्ट खाद बने है, जो की प्राकृतिक और एक जैविक खाद है।
0: बिल्कुल,
1: तो बिने तैयार करके फिर जो की पौधा कमाए गिरे खेत कमाए गिरे तो नए पौधा ने और भी फायदो।
0: बिल्कुल, और देखो कंपोस्ट जो है एक जैविक खाद है। आप हमेशा ही आजकल तो बहुत जोर चाल रहे हो संरक्षित सुरक्षित खेती को, जैविक खेती को, तो इमें भी आप एक कदम बढ़ा सका और फूल भी को माध्यम बन सके है। और जब माध्यम बनवा की बात आवे तब जानकारी की तरफ आपा चला, और आपने जो कार्यक्रम के माध्यम जानकारी अपना श्रोताओं तक पुगावा साहब।
1: बिल्कुल, जानकारी दे रहे हो साहब,
0: तो लियो जानकारी।
2: किसान वाणी सुनवा वाला सभी किसान भाइयों ने अनीता को घणो घणो राम राम सा। नई जानकारी और नया विशेषज्ञ के साथ आपके लिए हाजिर चा, तवा आज की जानकारी मैं आपके लिए ले रहा चा जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण का बारा में। ई विषय पर जानकारी देवा के लिए आपने कार्यक्रम में पधारिया छे कमलेश जांगीड जी, आप भंडार प्रबंधक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में पदस्थापित छे। कमलेश जी आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे, राम राम सा।
3: राम राम सा
2: जी, की आज आपा जानकारी ले वाला जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण का बारे में। खेती की वर्तमान जो पद्धतियां छे जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण की आवश्यकता आज क्यों पड़ रही छे, ई का बारे में किसान भाई ने विस्तार से बताओ।
3: खेती में पिछले लगभग 3 दशक के समय में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये था कि किसानों के द्वारा जो पेस्टिसाइड रासायनिक कीटनाशकों का जो इस्तेमाल था उसकी मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ाती गई।
2: जी।
3: किसान भाई एक एकड़ में जो मात्रा पिछले साल यूज कर रहा था उससे इस वर्ष की तुलना में उसमें ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वहां होने वाली जो उपज है उपज एक लेवल पे आके स्थिर हो गई और प्रतिवर्ष किसान के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली रासायनिक कीटनाशकों की जो दर है वो दर प्रतिवर्ष किसान को बढ़ानी पड़ रही है।
2: जी।
3: फिर किसान को लग रहा है कि जो मेरी उपज पैदा हो रही है उस उपज का अधिकांश हिस्सा मेरे उर्वरक और मेरी पेस्टिसाइड खरीदने में जा रहा है, परिणाम स्वरूप उसके यहाँ पे जो भी कुछ लाभांश बचना होता है खेती की उपज से वो लाभांश धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इस विषय को किसानों के स्तर पे दूसरे विशेषज्ञों के स्तर पे गहन अध्ययन चला कि ये विषय खेती कोई 2, 4, 5, 10 साल करने का विषय नहीं है, कहीं ना कहीं इस विषय में ऐसा एक टिकाऊपन आना चाहिए जिसमें किसान की लागत कम हो। कुछ किसान स्वयं के स्तर पे कुछ प्रिपरेशंस ऐसे बनाए बॉटनिकल जिससे उनको स्वयं इस्तेमाल करके कीट और रोग का प्रबंधन कर सके और वो खेत पे तैयार करेगा तो संभवतः उसकी लागत कम होएगी।
2: बिल्कुल,
3: लागत कम होएगी तो उसको होने वाला जो मुनाफा है जो मार्जिन है वो बेहतर होएगा। दूसरी तरफ आप जो जमीन है आप जो खेती के लिए जो मृदा है भूमि है उसकी गुणवत्ता सदैव ठीक बनी रहेगी, क्योंकि अब इस दौर में जो है ना आपकी मिट्टी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
2: बिल्कुल,
3: उसमें जो भी उपज पैदा होएगी उस उपज की गुणवत्ता उसी पे निर्भर करेगी कि उस मिट्टी में गुणवत्ता कैसी है, उसमें किस तरह के आप कार्बनिक पदार्थ किस तरह के आप जो आदान डालते हो इनपुट जिसको बोलते हो वो डालते हो, किस तरह के आप कीटनाशकों का प्रयोग करते हो नहीं करते हो, ये सारे विषय सारे फैक्टर जो है वो तय करते हैं कि जमीन की गुणवत्ता कैसी होगी, और जैसी जमीन की गुणवत्ता रहेगी वैसी उसमें उपज पैदा होगी और उस उपज की जो गुणवत्ता उसी पे निर्भर करेगी और वही उपज अपन सब लोगों को देर सवेर परिवार में सबको भोजन में मिलेगी। मतलब पूरी जो खाद्य श्रृंखला है वो खाद्य श्रृंखला का जो शुरुआत है वो खेती योग्य जो जमीन है उससे जुड़ा हुआ है। जमीन का सुधार करना और जमीन को टिकाऊपन बनाए रखने के लिए हमें ऐसी पद्धतियों पे काम करना है, उस पे कार्य जारी है कि जिससे किसान की लागत कम हो और वो जैविक विधि से कीट और रोग का नियंत्रण कर सके और अपनी गुणवत्ता

0: गुणवत्तापूर्ण उपज को बाजार में अच्छी कीमतों पे और कम लागत पे पैदा की उपज, जिसकी लागत उसकी कम है, और एक अच्छे उचित मूल्य पे बाजार में बेच के और एक अच्छा मुनाफा कमाए, ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है
1: जी। जब मिट्टी को स्वास्थ्य चोखो रहोलो जदी तो उपज चोखी होली,
0: उपज अच्छी होगी।
1: नहीं तो मिट्टी को स्वास्थ्य बिगड़े हो तो बस वह लागत बढ़ती जावली और उपज से जो एक स्तर
0: और उसके स्वास्थ्य के साथ अपना भी स्वास्थ्य धीमे धीमे प्रभावित होनेगा।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय की अवधि में उसका खाद्य श्रृंखला का असर पूरे जो भी खाद्य श्रृंखला में जुड़े हुए जीव प्राणी हैं, जो उस खाद्य श्रृंखला से पैदा होने वाली उपज को खाते हैं, उन सब पे इसका असर निश्चित रूप से आना तय है। गुणवत्तापूर्ण उपज होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अच्छी उपज होनी चाहिए, कम नहीं होनी, और उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी तो बाजार भाव अच्छा मिले।
1: बिल्कुल,
0: ये सारे विषयों को देख के कि किसान भाई स्वयं के स्तर पे कुछ कीट नियंत्रण की विधियां अपनाएं तो उनकी उपज में लगने वाले कीट हैं वो नियंत्रित रहेंगे।
1: तो सर जी, आज का समय में आप देखा चाह भाई फसलों में जो जैविक विधि से कीट नियंत्रण छे उनकी पद्धतियां छे, तो उनका बारे में किसान भाइयों ने थोड़ा विस्तार से बताओ।
0: किसान भाइयों, उसका तीन स्तर पे जैविक खेती में आपका कीट नियंत्रण का कार्यक्रम होता है। तीन पद्धतियां मुख्य रूप से, पहली पद्धति है जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रोकथाम। रोकथाम मतलब जब आप फसल लगा रहे हो तो उस अवस्था में आपको तय करना होता है। उसमें एक पहला बिंदु आता है कि जो भी फसल आप उस अपने खेत में लगा रहे हो वो कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधक होने चाहिए स्थानीय, वहां की आपकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कीट और रोग प्रतिरोधक किस्म का ही चयन करें। ठीक है, दूसरा, किसान भाई हर बार एक ही तरह की फसल एक ही जमीन पे नहीं ले। जैसे जिस प्लॉट पे आप गेहूं ले रहे हो, जिस फील्ड पे आप गेहूं ले रहे हो, अगली बार उस पे गेहूं ना ले। आप एक तरह का फसल चक्र अपनाते रहें। जैसे आपने जहां अभी गवार लिया है वहां पे आप गेहूं ले लें, ऐसे आप रोटेशन रखें, एक बार दलहनी फसल, उसके बाद एक बार नॉन दलहनी। ऐसे फसलों का एक फसल चक्र बनाए रखें। उससे क्या रहेगा, जो फसल आप एक ही फसल हर बारी लोगे तो उस फसल पे जो लगने वाले कीट और रोग हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, वो आपकी फसल को ज्यादा प्रभावित करेंगे। ठीक है, तीसरा विधि है, एक होता है आपका इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप क्या होता है कि जैसे आपका एक एकड़ खेत है तो उसमें से आपने आधे एरिया में का लगा दिया, उसके बगल में आधे एरिया में सोयाबीन लगा दिया। इंटरक्रॉप होने से भी आपके खेत में पेस्ट की तादाद कम होगी। एक और होता है, इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप बेसिकली नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैसे आपने चोला या मूंग लगाया और उसके चारों तरफ आपने तीन तीन चार चार लाइन जो है आपने गेंदे के फूल की लगा दी। गेंदे का फूल लगा दिया तो गेंदा जो है आपको मूंग में लगने वाले जो भी सकिंग इंसेक्ट है, जो एद मक्खी है, या जो वो आपका फ्रूट बोरर है जिसको फल छेदक बोलते हैं, इनको वो जो गेंदा लगाया वो गेंदा इनको प्रभावित करता है, इनकी संख्या कम करता है उसका, उस गेंदे की फसल की होने की वजह से उनका प्रकोप कम रहेगा। ठीक है, दूसरी पद्धति है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल और मैकेनिकल, यानी यांत्रिक, भौतिक और यांत्रिक विधियां। उसमें क्या होता है, किसान भाई जैसे अब पिछले दिनों रबी की फसल का कटाई होने के बाद खेत खाली हो जाते हैं, तो किसान भाई जैसे खेत खाली है उसके तुरंत बाद खेत की गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। हालांकि अधिकांश किसान भाई कर रहे हैं, और भी निश्चित रूप से जैसे आपका खेत खाली हो आप उस खेत की गहरी जुताई करके उसको खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने से क्या रहेगा, वो जो जमीन के अंदर कोई कीट जनक कोई जो सूक्ष्म जीव है जो सब बाहर आ जाएंगे, सूर्य की जो तपन में किरणें पड़ेंगी तो उसमें वो कीट और रोग के जो सूक्ष्म जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो एक सप्ताह उपचार हुआ ना, उनके अंडे होंगे, उनके जो भी सूक्ष्म जीव होंगे वो जीव धूप में आने से। दूसरी पद्धति एक मल्चिंग। मल्चिंग आमतौर पे क्या होता है, जैसे आपने एक एकड़ में फसल लगाई है और उस फसल के आसपास कुछ खाली एरिया पड़ा है, वो खाली एरिया जो है वो आपकी फसल के लिए कीट पैदा करने का काम करता है। तो उस खाली एरिया में जो भी आसपास पड़ा है वहां पे आप मल्च मतलब एक परत बना दी, जैसे आपने सूखे पत्ते डाल दिए, आपने कुछ पेड़ों की घास डाल दिया, कुछ उस तरह के पुआल आता है वो डाल दिया, फसल के अवशेष डाल दिया या कंपोस्ट डाल दिया। ये मल्च काम दो तरह के काम करता है। एक तो क्या होगा, उस मल्च के नीचे सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंचने से खरपतवार, सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगी तो खरपतवार का जो है कम होएगा। वो खरपतवार आपकी फसल में लगने वाले कीटों को आश्रय देता है। इनडायरेक्ट रूप से वो खरपतवार पे कीट रहेंगे और वो कीट उस पे आश्रित रहेंगे जो आपकी फसल को नुकसान करेंगे, तो खरपतवार को आश्रय देता है। तो आसपास आप मल्च कर दोगे तो वो नहीं होगा। दूसरा, उस मल्च के करने से एक बड़ा होता है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जमीन पर अंडे देते हैं, तो खरपतवार को जो मल्च रहेगा तो उनपे जमीन पर अंडे देने की जो है वो संभावनाएं कम होंगी, तो आपका प्रकोप कम रहेगा। अब आते हैं तीसरे विषय पे। तीसरा विषय है कि किसान भाई, ये तो हो गया प्रिवेंटिव मतलब आपको रोकथाम के लिए। अब चूंकि अभी वर्तमान की बात करें तो अब फसल खड़ी है, किसी के मूंग खड़ा है, मोट की फसल तैयार है, चल रही है, उसमें कुछ फल छेदक कीट लग रहा है, कहीं कहीं कुछ सकिंग इंसेक्ट जिसको एफिड बोलते हैं,

0: वो लगे हैं, तो उनका नियंत्रण कैसे करें? फसल तो बुआई हो गई,
1: जी
0: अब तो फसल एकदम अच्छी स्थिति में, तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को एक दो चीजें ऐसी बताता हूँ वो अपने खेत में तैयार कर सकते हैं।
1: जी
0: पहली एक विधि बता रहा हूँ, अच्छे से आराम नोट कर लें। किसान भाई एक ऐसा भगोना ले जिसमें कि लगभग 20 लीटर गोमूत्र आ जाए,
1: जी
0: और उसमें 3 किलोग्राम नीम की पत्तियों को लेके थोड़ा क्रश करके उसमें डाल दें। 3 किलो आक, जो आंकड़ा बोलते हैं उसको, आक
1: हाँ
0: की पत्तियां, और 3 किलोग्राम आसपास जो भी जैसे सीताफल मिल जाए किसी एरिया में तो सीताफल की पत्तियां,
1: जी
0: और फिर 300 ग्राम उनको हरी या लाल मिर्ची जो तीखी आती है, बहुत हाईली पंजेंट होती है ना, जिसमें तीखापन ज्यादा हो,
1: जी
0: वो मिर्ची को क्रश करके उसमें डाल देना है। ये सारा जो मटेरियल है, इस मटेरियल को उस भगोने में आप उबालो अच्छा खासा, और उबालने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा करके इस घोल को छान लो,
1: जी
0: और छानने के बाद इस घोल से आप अपने अलग किसी कंटेनर में 1-1 लीटर की बोतल भर के इसको रख लो। ये जो बना है कीटनाशक, ये कीटनाशक 2-4-6 महीने खराब नहीं होगा।
1: जी
0: गौमूत्र का जो कीटनाशक है, आप इसको 6 महीने तक भी इस्तेमाल करोगे तो कोई खराब नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, सायंकाल में आप 1 लीटर इस घोल को 20 लीटर पानी में मिला लीजिए, 1:20, 20 लीटर पानी में मिला लिया, और सायंकाल जैसे आपकी मूंग की फसल है या आपकी चोला की फसल है जिसमें आपको लगता है कि फलछेदक कीट लगा हुआ है, सायंकाल उसमें आप छिड़काव कर दीजिए। आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको शीघ्र ही मिलेंगे। जितना लग गया कीट उतना लगे आगे उसकी संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से किसान भाई एक समन्वित प्रयास करके अपने खेत पे जो जो फसल है उसको अच्छी तरह से बचा सकते हैं और उसपे कीट नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं।
1: थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भाई नीम आधारित जैविक कीटनाशकों को कीट नियंत्रण में कायम है।
0: नीम जैविक विधि में कीटनाशक में एक मुख्य पेड़ है, तो आपने निम्बोली का नाम सुना होगा, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट।
1: जी
0: निम्बोली को थोड़ा क्रश करना, क्रश आप किसी भी बर्तन में
1: जी
0: उसको क्रश कर लीजिए, और क्रश करके उसका जो है एक सॉल्यूशन बना लीजिए, और उसको आप लगभग 3 से 4 दिन उसमें छोड़ दीजिए किसी बर्तन में, चाहे मटका हो या कोई दूसरा आपके पास कोई बर्तन हो, और उसको 3-4 दिन बाद जो उसके अंदर घोल बना है उस घोल को एक साफ सुथरे कपड़े से छान लो, और
1: जी
0: छानने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को 1:2 यानी 1:100 में, 100 ml आप बोलेंगे तो उसका 20 गुना,
1: जी
0: 1 लीटर को 20 लीटर में, 20 लीटर में घोल के इसका आप किसी भी फसल पे छिड़काव करेंगे तो इसका एक रिपेलेंट इफेक्ट होता है। रिपेलेंट का मतलब होता है जो कीट उस फसल के नजदीक आ रहा होता है ना, इसी नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जो निमूली का जो आपने रस निकाला है उसकी वजह से उस कीट फसल के आसपास नहीं आएगा, उसको रिपेलेंट इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है एक एंटीफिडेंट, मतलब वो कीट चाहकर भी उस फसल के ऊपर उसको फीड नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके उसे प्रतिकर्षण बनता है। ये नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का काम होता है।
1: जी
0: एक तो इसका महत्वपूर्ण काम ये हो गया। दूसरा, इसकी पत्तियों का जैसे बताया था, ये जो आपको बोटनिकल प्रिपरेशन बनाने की जो विधि बताई थी किसान भाई अपने खेत पे,
1: जी
0: ऐसा ही मैं एक आपको दूसरा उपाय भी बताता हूँ। किसान भाई एक 10 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें और 10 लीटर गौमूत्र ले लें,
1: जी
0: और उसमें आपको 1 किलोग्राम जो है गुड़, देसी गुड़ जो भी हो वो गुड़ ले लें। ये
1: हाँ
0: सामग्री बता रहा हूँ, फिर इसको प्रयोग कैसे करना है।
1: जी
0: और 1 किलो कोई सी भी दाल हो, चना, मूंग, मोठ, उस दाल का आटा यानी बेसन,
1: जी
0: ठीक है जी। और आपको उसके बाद 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी में सारे शाम को घोल दें और इसको एक ड्रम में डाल दें। उस ड्रम में दिन में एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दें, वो ड्रम 6 से 7 दिन तक छायादार स्थान में रखा रहने दें, उसको बंद कर दें, दिन में एक बार अच्छे से मिला दें, और फिर उस घोल को है कपड़े से छान के, और जो घोल आ रहा है उस घोल को 1:20 यानी 1 लीटर घोल को 20 लीटर पानी में करके, और आप अगर कोई किसान भाई जैसे ड्रिप लगा रखा है सब्जी कर रहा है
1: हाँ
0: तो उस ड्रिप के साथ इसको प्रयोग कर ले, तो उसकी जमीन की उर्वरता अच्छी रहेगी, कीट प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और कीटों का प्रकोप भी कम होगा।
1: श्रोता, आज अपने कार्यक्रम में पधारे छे कमलेश जांगीर जी, आप भंडार प्रबंधक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में पदस्थापित छे, और आपने जानकारी दे रहे छे जैविक विधि से फसल में कीट नियंत्रण का बारे में। आपने किसान भाइयों ने ज्यादा से ज्यादा जैविक विधि अपनानी चाहिए जिससे कि मिट्टी को स्वास्थ्य चोखो होवे। आगे आपसे जानबो चावला भाई, परभक्षी और परजीवी कीटा की सहायता से कीट नियंत्रण करो जा सके छे?
0: जहाँ खेती पैदा करते हो उसको पारिस्थिति की जो है ना, उसमें सब तरह के जीव होते हैं। जो परभक्षी जीव होता है जो वो क्या हानिकारक कीट की खाता है,
1: जी
0: हानिकारक कीट जो आपकी फसल पे होएगा। आप कभी देखा होगा कि आपके खेत में प्लोइंग करते हैं तो प्लोइंग के दौरान पीछे पीछे कुछ पक्षी आप देखोगे उस ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलते रहते हैं, टिटेरी हुआ ये, वो क्या रहते हैं, वो आपके हानिकारक कीट और जो जीव है वो कीट और जीव को एलिमिनेट करते हैं,
1: अच्छा
0: उनको खा जाते हैं वो, तो वो प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण हुआ ना।

0: सदैव मिलेगा। कोई भी किसान भाई अपने खेत में अगर जुताई कर रहा है, जुताई के दौरान वो देखेगा इसके ट्रैक्टर के पीछे कुछ पक्षी उस ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलते रहते हैं। उनका क्या उद्देश्य है, आपकी जमीन से जैसे ही वो मिट्टी पलटेगी और उसके नीचे जो भी अंडे उनके कीटाणु जो भी सूक्ष्म जीव होंगे जैसे बाहर आएंगे वो जीव उनको खा जाएगा। तो वो कीट नियंत्रण की विधि हो गई ना, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैविक विधि से,
1: जी
0: मतलब कीट कीट को खा रहा है। जी,
1: तो यो भी एक बेहतर तरीको छे
0: ये
1: कीट
0: भी एक बेहतर
1: नियंत्रण।
0: तरीका है।
1: अपना कई किसान भाई जैविक विधि से फसलों में कीट नियंत्रण की तरफ बढ़ रहा छे, जैविक विधि से जो खेती छे उनकी तरफ भी बढ़ रहा छे, जिससे कि फसलों की पैदावार भी चोखी हो रही छे। पर अब भी कई किसान भाई ऐसा छे जो रासायनिक उर्वरक छे या रासायनिक तरीका से खेती करे छे, तो थोड़ा सो अंडा या जानबो चाहूंगा भाई, जैविक कीट नियंत्रण और रासायनिक कीट नियंत्रण में काई अंतर छे, जिससे कि अपना जो किसान भाई अभी भी रासायनिक प्रक्रिया से खेती किसानी करे छे वह जैविक की तरफ बढ़े।
0: जैविक और रासायनिक, रासायनिक में मैंने अभी जैसे आपको बता रहा हूँ कि रासायनिक कीट नियंत्रण में क्या होता है, जैसे किसान भाई अपने खेत में फसल लगा दी, उसको लगता है कि खरपतवार पैदा हो गया, तो बाजार से पेस्टिसाइड लाएगा वो हर्बिसाइड्स, और वो फसल पे छिड़काव कर देगा।
1: जी
0: तो वो जो खरपतवार उगने वाला है उसको जैसे उगने से पहले ही उसको उस पे उस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर देगा, तो उसका उगना ही बंद हो जाएगा। जबकि वास्तव में आपके पारिस्थिति के तंत्र के लिए जो भी पौधा उग रहा है वो उस पारिस्थिति के तंत्र के लिए आवश्यक है।
1: जी
0: बायोलॉजी उसमें क्या कर रहे हो आप, जैविक विधि में आपको या तो उसका आपके पास जोत कितनी बड़ी है खेत, उस खेत में या तो आप उसको हाथ से उखाड़ रहे हो खरपतवार को, ठीक है, या आप जो खाद इस्तेमाल कर रहे हो वो खाद अच्छी सड़ी गली खाद है, उस सड़ी गली खाद में जो खरपतवार का बीज है वो पहले ही विघटित हो चुका है, वो खरपतवार का बीज पहले ही खत्म हो गया है, तो
1: जी
0: अगली बार से वो खरपतवार पैदा नहीं होएगा। जैसे आप मानो कि इस फसल में आपके खरपतवार आ गया, आपने उस खरपतवार को काट के एक तरह इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके आपने उसमें कंपोस्ट खाद के अंदर डाल,
1: जी
0: वो खाद जब अच्छे से सड़ेगी तो बीज उस खाद के अंदर ही सड़ जाएगा, तो अगली बार नहीं होगा। और अगर उससे ज्यादा मात्रा में है तो आपने उसको निकाल के कहीं एक तरह का खड्डा करके उस खड्डे में उस खरपतवार को अलग से जमीन में दबा दिया,
1: जी
0: तो उसको आगे फैलने से रोक दिया। तो जैविक विधि में आपको ये तक अपनानी पड़ेगी, और उधर आपको सिर्फ पेस्टिसाइड लाया आपको एप्लीकेशन करना है, बट वो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल कर रहे हो वो उस जमीन में आने वाले सालों साल तक बना रहेगा। आप उस जमीन से जो भी उपज लोगे उस उपज में उसका रेजिडुअल इफेक्ट यानी अवशेष प्रभाव बना रहेगा, और उससे जो भी उपज पैदा होगी उस उपज में उसका प्रभाव होने से आपकी पूरी खाद्य श्रृंखला में उस पेस्टिसाइड का असर रहेगा जो गुणवत्तापूर्ण। और दूसरा इंपॉर्टेंट विषय कि आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो प्रभावित होगी,
1: जी
0: और जैसे जैसे वो कमजोर होगी अंततोगत्वा आपकी उपज भी प्रभावित होगी और उसकी उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।
1: देने की कोई भी तरीका से या आपने लाभदायक छही को
0: किसान भाई को धीमे धीमे आज उसने रासायनिक से कर रहा है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच ले सकता है कि उसकी मात्रा कम करे, कुछ जैविक विधि अपनाए, कुछ समय के बाद उसकी जमीन इतनी अच्छी मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा कि वो खुद कुछ सक्षम होएगी कि उसमें जो पैदा होने वाला पौधा जो फसल है वो मजबूत स्थिति में होए।
1: जी
0: और कुछ किसान भाई अपने खेत पे इस तरह की बॉटनिकल प्रिपरेशन जैविक प्रिपरेशन तैयार करके उसका इस्तेमाल करें, उससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसान की लागत कम रहेगी, उपज की गुणवत्ता बढ़िया रहेगी और किसान को होने वाला लाभ अच्छा होगा।
1: जी
0: ये सारे प्रक्रिया का यही पूरा मूल जो है वो ये है।
1: तो चलता चलता कमलेश जी, आपका ही संदेश आप किसान भाई ने देबो चावला।
0: किसान भाइयों से एक मेरा अनुरोध है कि वो अपनी खेती के लिए जो मिट्टी है, जो मृदा है जिसपे अपन उपज पैदा करते हैं, उसकी गुणवत्ता उसकी स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दें।
1: जी
0: अब आने वाले समय में इसकी की मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी खेत में पैदा होने वाले उपज की गुणवत्ता को लेकर, और जो गुणवत्ता युक्त उपज बाजार में जा रही है उसको लेकर। वो मृदा ही एक मूल स्रोत है जहां से गुणवत्ता युक्त पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी फसल, जो भी उपज, जो भी सब्जी, जो भी फल पैदा होएगा वो उस जमीन से पैदा होएगा। इसीलिए उस मृदा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु निरंतर प्रयास करें, समन्वित प्रयास करें, और अपने खेत पे जो भी आपके पास पद्धतियां हैं जैसे कंपोस्ट बनाने की हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट बनाने की है, अन्य तकनीकी आपकी विधि हैं जिनसे आप अपने खेत पे पैदा होने वाले जो फसल हैं उन फसलों को जैविक तरीके से खेती कर सकें और एक गुणवत्तापूर्ण उपज पैदा कर सकें, और साथ ही साथ खेती के टिकाऊपन को,
1: जी
0: खेती कोई 2, 5, 10 साल का काम नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है,
1: जी
0: तो खेती के टिकाऊपन को बनाने की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर होएं, ये मेरा उनसे अनुरोध है।
1: जद मिट्टी को स्वास्थ्य सही रेवलो जदी तो फसल चोखी है वाली, और पीढ़ी दर पीढ़ी चोखी फसल वह खुद भी पावेला, जिसे कि सारो जो चक्र चे वो सही तरीका से सुधर पावलो। जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण का बारे में जानकारी दिया कमलेश जांगीड़। आप भंडार प्रबंधक राजस्थान राज्य।

0: भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में पदस्थापित है। आप कार्यक्रम में पधार्या और इतनी चोखी तरीका से किसान भाई ने जानकारी दिया, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा।
1: अरे अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: तो चोखी जानकारी, और जानकारी जदी फड़े है, जद सुनबालो सुने भी और गुणे भी।
5: बिल्कुल, जानकारी की जरूरत है, कि देखो नवाचार को युग है, समय बदल रहे है, हर चीज तकनीक भी बदल रही है, तो किसान भी देखो नई नई चीजों पर आ रहे हैं।
4: बिल्कुल, और समझदार आदमी वही है महेश भाई, कि जो समय का परिवर्तन के साथ खुद में सकारात्मक परिवर्तन करे।
5: बिल्कुल,
4: है ना, कि अब मोबाइल को जमानो है तो आप 24 घंटा मोबाइल ही देख रहे हैं, यो तो कोई परिवर्तन को नहीं। लेकिन अगर आप मोबाइल में 2 घंटा 3 घंटा क्यों देख रहे हैं, काम की चीज, ज्ञान की चीज देख रहे हैं, तो वो परिवर्तन है।
5: बिल्कुल भी, मोबाइल देखो किसान के लिए भी, मंडी का भाव भी देख सके है, और जगह किसान संगठन हो बस कोई जानकारी साझा कर सके है।
4: आजकल तो मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कर आप सिंचाई को, जो आप समय है बूंद बूंद सिंचाई को या स्प्रिंकलर को, बिना भी निश्चित कर सको हो, और बस आप ऑटो पे लगा दो, बिना अपने आप ही सिंचाई कर दे।
5: बिल्कुल, खेती के माने देखो ड्रोन आगे है, और नया नया तरीका आ रखे हैं, और खेती में बहुत सी चीजें की नई नई प्रकार की फसलां बने उगाने का तरीका, जिया की देखो पोली हाउस आई
4: जी।
5: तो किसान देखो समय के साथ साथ पारंपरिक खेती ने छोड़ के और नई तकनीक ने अपनाओगे, नई प्रकार की खेती ने जदी आपा आगे बढ़ेगा।
4: बिल्कुल, और आगे तो देखो कहवे ना कि समय को जो चक्र है वो चालतो रहे और

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण हमने आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया, FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयाँ रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव

0: भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है, तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
1: जी
0: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
1: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
0: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
1: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते
1: बिल्कुल।
0: हैं, और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
1: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं, भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
0: तो श्रोताओ यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
1: जी।
0: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
1: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
0: श्रोताओं यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
0: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी।
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओ लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
1: जी,
0: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओ इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो को देखो, हमारे आगे पशु पक्षी को देखो, हमारे घर के सारे सामान बैठ जाएगा।

0: खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
1: सारी फसल बह गई।
2: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
0: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
1: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
0: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
2: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
0: अरे काट काट काट, मेरा भूत क्या देख रहा काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
2: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
2: तो साथियों ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ

0: कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
2: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
3: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
4: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
5: हमारे घर का सारा सामान बह जाएगा।
6: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
6: सारी फसल बह गई।
5: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
6: उसी
5: में तो ऊपर ले जाना होगा।
6: चलो जल्दी ऊपर।
5: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
6: चलो चलो।
5: पानी है चालू कर, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
6: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
7: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
9: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: की जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
1: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
0: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
1: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
0: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
1: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
1: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
0: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
1: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

0: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
1: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
1: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
1: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन...
1: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: हाँ सर।
1: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश के पीटी उषा जो भाग ले रही हैं।
5: ऊंचा हो जाएगा।
4: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ये क्या हुआ? अरे वो पहुंच गए मुझे रेखा पर। जीत गए भाई, जीत गए।
3: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी। शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा

0: जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
2: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: चेतना,
3: जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण अभी किया गया। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं एल्बम सॉन्ग। कार्यक्रम का ये पहला गीत मिक्का सिंह का गाया हुआ।

शामिल है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: करने के लिए रेडी है, क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: कार्यक्रम घूमर का ये अगला गीत निर्मल मिश्रा की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हिंदी में समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
2: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
3: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो, यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
2: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
4: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
2: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
5: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
1: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
6: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है।

0: अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
3: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
4: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त

0: करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए

0: गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएमएंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें, जिसमें आज कलाकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह। आइए सुनते हैं इन्हीं की गाई हुई कार्यक्रम की ये पहली गजल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आपके लिए लीजिए, सुनिए आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है OP नैयर ने।

ये है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: हाँ।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयिता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजयता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया ये।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

0: विजेता पंडित ने अपने समय के लगभग सभी बड़े और नामी कलाकारों के साथ नायिका की भूमिकाएं निभाई।
1: सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया।
0: अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वेयर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार, हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका मां विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब समाप्त होती है। कल सुबह 8:51 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।